FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। आज शुक्रवार है, सक संवत 1948, ज्येष्ठ माह की तिथि 22, तदनुसार 12 जून ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की सभा।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने

0: कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्यबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

परशुराम पर श्रीराम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने के साथ ही राजा जनक का धनुष यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। मिथिलेश को अपने सम्मुख नतमस्तक देख मुनिवर विश्वामित्र बोले, हे राजन, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। फिर भी ब्राह्मणों, कुलगुरु तथा अन्य आदरणीय जनों से पूछकर जो भी आपके कुल की रीतियां हों उन्हें पूरा कीजिए। अयोध्या दूत भेजकर राजा दशरथ को ये शुभ संवाद दीजिए ताकि उनके आगमन पर ये मंगल कार्य विधिपूर्वक पूरा हो सके। दूत अयोध्या को चले और इधर राजा जनक ने सगे संबंधियों तथा राज कर्मचारियों को पूरी नगरी, बाजार, राजमार्गों, भवनों, देवालयों को सजाने के आदेश दिए। मंडप बनाने वाले कुशल कारीगरों को बुला भेजा गया जिन्होंने हरित मणियों के पत्तों तथा फूलों और पद्मराग माणिकों के फलों से ऐसा मंडप बनाया जिसकी शोभा देख ब्रह्मा भी अपनी रचना भूल गए। भांति भांति के माणिक मोतियों, बहुमूल्य रत्नों तथा अन्य उपकरणों से नगर की सजावट होने लगी। जिस मंडप में जनक नंदिनी दुल्हन और रूप और गुणों के भंडार श्री राम दुल्हा होंगे वो मंडप त्रिलोक में अनूठा होना ही चाहिए।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज के कलाकार थे ए हरिहरन और साथी संगीत था सतीश भाटिया का। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है।

स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम समर्पण। करते हैं भक्ति गीतों के कार्यक्रम समर्पण की शुरुआत और आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम समर्पण में एक ही भजन गायक ओम व्यास को।

आकाशवाणी चाईबासा से आप इस समय सुन रहे हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम समर्पण। आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही भजन गायक ओम व्यास के स्वर में चंद भक्ति रचनाएं।

श्रोताओं, ओम व्यास के स्वर में गाई हुई इस भक्ति रचना के साथ ही हमारा आज का ये भक्ति गीतों का कार्यक्रम समर्पण अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम समर्पण।

FM के 101.7 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब हम आपको हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा दे दें। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, अब हम आपको हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा देने जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद श्रोताओं, यानी कि सुबह के 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे एक ही गायक कलाकार रीना मिश्रा के स्वर में सजे चंचुनिंदा नगमे।

आप सभी श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत के कार्यक्रम जोहार चायबासा का आनंद आप लेंगे सुबह के 7 बजे। प्रातः के 8 बजे हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात। आकाशवाणी दिल्ली से ही प्रसारित अंग्रेजी समाचारों को आप सुनेंगे सुबह के 8:15 पर, और 8:30 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। लोकगीतों के कार्यक्रम माटी की महक को लेकर हम आपके साथ होंगे सुबह के 8:40 पर। आज इस कार्यक्रम के तहत हम आपको सुनवाएंगे कुरमाली लोकगीत कलाकार जॉर्ज नाग और साथियों के स्वरों में। कार्यक्रम विविधा, इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा सुबह के 9 बजे का। आज इस कार्यक्रम के तहत चर्चा का विषय होगा बाल श्रम निषेध दिवस। 9:30 पर प्रसारित होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन, और पूर्वाहन के 10 बजे आप सुनेंगे NCERT के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। पूर्वाहन के 10:30 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को। दोपहर के 1:10 पर प्रसारित होंगे आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार, और 1:20 पर आप आनंद लेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का। दोपहर के 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची से ही प्रसारित आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का आनंद आप लेंगे दोपहर 3 बजे। संध्या 4 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से मुख्य समाचार, और 4:02 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को। संध्या 5 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार। संध्या 5:05 पर प्रसारित होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के इस कार्यक्रम के तहत हम आपको सुनवाएंगे एक ही गीतकार की लेखनी से निकले चंचुलिंदा नगमे। संध्या 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। संध्या 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से मुख्य समाचार, और संध्या के 6:02 पर प्रसारित होगा क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अखड़ा। हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को संबोधित साप्ताहिक कार्यक्रम नन्ही दुनिया, इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा संध्या 6:30 पर। संध्या के 7 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। संध्या 7:10 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष। आज के कार्यक्रम में विषय होगा जन विश्वास। आज इस कार्यक्रम की आप 12वीं कड़ी सुनेंगे। संध्या 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद, और रात्रि के 8 बजे का प्रसारण समय रहेगा फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का। रात्रि के 8:45 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। रात्रि के 9:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को, जो कि प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। रात्रि के 10 बजे का प्रसारण समय रहेगा गजलों के कार्यक्रम महफिल का। 10:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुरों के रंग का। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। यहीं से प्रसारित अंग्रेजी समाचारों को आप सुनेंगे रात्रि के 11:05 पर, और रात्रि के 11:10 पर हमारे आज के सभा समापन की उद्घोषणा होगी। तो श्रोताओं, ये थी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। FM के 101.7 MHz पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है।

स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:45 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कार्यक्रम सुगम संगीत में हम आपको सुनवाएंगे एक ही गायक कलाकार रीना मिश्रा को।

रीना मिश्रा के स्वर में गाए हुए इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत।

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बजने वाले हैं, वक्त बज चुके हैं और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा। करते हैं कार्यक्रम जोहार चायबासा की शुरुआत इस गीत के साथ।

कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को मेरा यानी कि आपकी रेडियो सखी संगीता का नमस्कार जोहार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हमने की है गायक कलाकार सोनू निगम और साथियों के स्वरों में गाए हुए इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म बस इतना सा ख्वाब है से। इस गीत के बोल लिखे हैं रिदा फाजली ने और धुन है आदेश श्रीवास्तव की।

कार्यक्रम का ये अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आराधना से, आवाजें गायक कलाकार मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन है एसडी वर्मन की।

गायक कलाकार मुकेश के स्वर में आपने ये गीत सुना फिल्म मेला से। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत गायक कलाकार किशोर कुमार के स्वर में फिल्म मेरे जीवन साथी से।

फिल्म सूरज और चंदा से ये गीत आपने सुना गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। कार्यक्रम का अगला नगमा आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मेरा साया से, आवाज़ गायक कलाकार लता मंगेशकर की।

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे आम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: वरना मंगलोर है को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहां बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे भक्त कहाँ तो घर आई में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो हम बात हो जाए है
5: मुतुम बुरन सिंह तमसोय अनिता तमसोय रूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में ना आया यापा में रियल तपा में रियल वाह बेटा मिका
6: अन्य मुतुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मैंने मैं पुरी उड़ी ने बागिया तो कि मैं दोनों से यार थी कोलो पुलिस कोलो मैं लड़ाई चलाओ तो मैं दूर रहने को यहाँ तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेरे मिया
7: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लिंग से जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया न तुम ते ना मिला आप ही लेते ना
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण निशुल्क चिकित्सा बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क कन्यादान हेतु अनुदान उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
8: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
9: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
8: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
9: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
8: डायल कीजिए 8700014242।
9: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
10: इस छोटे से विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम जोहार चायबासा में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला फिल्म संगीत। गायक कलाकार लता मंगेशकर और अनूप जलोटा के युगल स्वरों में फिल्म एक दूजे के लिए से।
11: कोशिश करे

गायक कलाकार किशोर कुमार के स्वर में ये गीत आपने सुना फिल्म ब्लैकमेल से। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत गायक कलाकार लता मंगेशकर और सुबीर कुमार के युगल स्वरों में फिल्म प्यार झुकता नहीं से। बोल SH बिहारी के हैं, धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

नहीं तू मत माइके माइके मत जाइयो। ए

श्रोताओं, अमिताभ बच्चन के स्वर में गाए हुए फिल्म पुकार के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम जोहार चाय बासा अब यहीं समाप्त होता है। तो अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी संगीता को विदा दें, नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार चाय बासा।

FM के 101.7 मेगा हर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। अब से कुछ ही देर में स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचारों का, तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली।

0: भारत के गांव-गांव में जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
2: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे, और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
2: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो के वाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
4: We signed this year a free trade agreement with Europe.
5: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
6: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1,000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2,500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
7: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
6: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में

0: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पश्चिम पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Center signed historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite memorandum of understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart, Nephew Ryu. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the signing of the MOU is a historic moment and it will enhance the prospects for oil and natural gas exploration in the country.
3: With just this one MOU, we will be able to increase our oil extraction capacity from 1,000 to 1,500

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति के हाथों बोकारो के सीआरपीएफ जवान को शौर्य चक्र मिलने के बाद पूरे राज्य में जश्न का माहौल। सम्मान पाकर भावुक और उत्साहित हुए जांबाज सद्दाम हुसैन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने एसआईआर कार्यक्रम के लिए एईआरओ के रिक्त पदों को जल्द भरने के दिए निर्देश। रांची के सभी बूथों पर कल से 2 दिवसीय मैपिंग शिविर। राज्य के 8 नए जिलों में जल्द शुरू होंगे आधार सेवा केंद्र। यूआईडीएआई के नागरिकों ने नागरिकों से सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1947 पर संपर्क करने को कहा। मौसम विभाग ने आज रांची, बोकारो और जमशेदपुर सहित राज्य के कई हिस्सों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी और भारी बारिश की जारी की चेतावनी। ऑरेंज अलर्ट जारी। और हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय दिव्यांग टी20 क्रिकेट सीरीज के लिए झारखंड के 4 प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन। निशांत, नीरज, शौकत और वागीश दिखाएंगे दम। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोकारो के सीआरपीएफ जवान सद्दाम हुसैन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में 2 आतंकवादियों को मात्र 25 मीटर की दूरी से सटीक प्रहार कर उन्होंने ढेर कर दिया था। राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिलने से सद्दाम हुसैन खासा उत्साहित।
1: सीओ साहब से सूचना मिली कि फॉरेन कुछ टेररिस्ट हमारे एरिया के अंदर घुस चुके थे और उसी नुकसान से बचने के लिए जैसे हमें जानकारी मिली हम अपने टीम के साथ वहां गए, ऑपरेशन को सक्सेस किए और 25 मीटर की दूरी में ही आतंकवादी को मार के गिराए।

0: आतंकवादी जो था वो फॉरेन टेररिस्ट था, वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के फिराक से अंदर घुसे थे। दो दिन की लड़ाई चली और उसको मार गिराया गया।
1: राज्य में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी यानी AERO के रिक्त 147 पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने का निर्देश दिया है। रांची में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत 13 और 14 जून को विशेष मैपिंग शिविर लगेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर यह शिविर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक लगेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने अधिकारियों को शिविरों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। राज्य में आधार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 8 नए आधार सेवा केंद्र जल्द शुरू होंगे। ये केंद्र हजारीबाग, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, गढ़वा, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में खुलेंगे। UIDAI ने नागरिकों से केवल अधिकृत केंद्रों का उपयोग करने की अपील की है। किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1947 पर संपर्क किया जा सकता है। धनबाद गया रेलखंड पर रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इस रूट पर स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली यानी कवच तकनीक से लैस ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया। रेलवे द्वारा किया गया यह ट्रायल पूरी तरह सफल रहा। धनबाद रेल मंडल DRM अखिलेश मिश्रा ने बताया कि इस तकनीक के लागू होने से एक ही पटरी पर दो ट्रेनों के आने की स्थिति में ब्रेक अपने आप लग जाएंगे।
2: बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली है क्योंकि जिस तरह से ट्रेनें अब हम लोग चला रहे हैं बहुत ही रफ्तार बढ़ती जा रही है, ट्रेनों के बीच में जो स्पेसिंग है वो कम होती जा रही है। किसी भी तरह से अगर मानवीय चूक होती है तो ह्यूमन एरर को गार्ड करने के लिए कवच की प्रणाली है और ये एक अच्छी प्रूवन टेक्नोलॉजी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भारतवर्ष में डेवलप हुई है। RTSO और टीम ने उसका डिजाइन बनाया है।
1: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने चाईबासा में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने जिले में खाद्यान्न के उठाव, परिवहन और भंडारण की स्थिति का जायजा लिया। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी पात्र लाभुकों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने वित्तीय प्रणालियों को नुकसान पहुंचाने वाले साइबर अपराधियों के बढ़ते खतरे पर कड़ी चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए के खनिज बकाए के त्वरित भुगतान की मांग की है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने रांची मेट्रो ट्रेन, पारा शिक्षकों के मानदेय और नक्सल विरोधी अभियानों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता का मुद्दा भी उठाया। इस पर झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य के हक की आवाज बुलंद की है, केंद्र बकाया तुरंत जारी करे।
4: तो नीति आयोग की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारे राज्य के जो बकाया है वो बकाया दे दिया जाए, क्योंकि राज्य की जो राजकोषीय

0: जरूरतें हैं उसको पूरी करनी है। तो एक मेट्रो रेल यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए होना चाहिए।
1: पलटवार में भाजपा प्रवक्ता अजय साहा ने कहा कि राज्य सरकार राजनीतिक छोड़ केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन और आंतरिक सुरक्षा सुधारने पर ध्यान दे।
2: आपको इस बात का जवाब देना चाहिए कि बोकारो में, चाईबासा में, लातेहार में, झारखंड के अन्य जिलों में जो DMFT स्कैम हुआ है उसकी जांच कहां तक पहुंची है। 1,36,000 करोड़ के मामले में वापस से आपने झारखंड की जनता को क्यों गुमराह किया? लैंड एक्विजिशन को आप क्यों सिंप्लीफाई करना चाहते हैं? क्या आपकी मंशा वापस से रिम्स 2 को या जगह जगह दोहराने की है?
1: मौसम विभाग ने आज झारखंड के कई जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विशेषकर रांची, बोकारो और जमशेदपुर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने और मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। हरियाणा के यमुनानगर में 13 से 15 जून तक आयोजित होने वाली T20 केसरी दिव्यांग क्रिकेट राष्ट्रीय सीरीज में झारखंड के 4 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इंडिया ए टीम में निशांत कुमार उपाध्याय, नीरज कुमार और शौकत अली को जगह मिली है, जबकि वागीश त्रिपाठी इंडिया बी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये सभी खिलाड़ी रांची से रवाना हो चुके हैं। JSCS स्टेडियम में खेली जा रही झारखंड T20 लीग में आज 2 मुकाबले होंगे। पहले में छोटा नागपुर रॉयल्स का सामना कोयलांचल सुपर किंग्स से होगा, जबकि दूसरे मैच में धनबाद डायमंड्स और जमशेदपुर स्टीलर्स की टीमें आमने सामने होंगी। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा उठाए गए मुद्दों को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, झारखंड को सिर्फ खनिज राज्य ही नहीं नॉलेज हब बनाना है। प्रभात खबर की सुर्खी है, जेट प्रावधान में होगा बदलाव, 25,000 शिक्षकों को राहत। हिंदुस्तान के शब्द हैं, सर्वोच्च अदालत ने गृहिणियों के कार्य की कीमत आंकी। दैनिक जागरण लिखता है, CM 29 जून को सहायक आचार्यों को देंगे नियुक्ति पत्र। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति के हाथों बोकारो के CRPF जवान को शौर्य चक्र मिलने के बाद पूरे राज्य में जश्न का माहौल। सम्मान पाकर भावुक और उत्साहित हुए जांबाज सद्दाम हुसैन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने SIR कार्यक्रम के लिए AERO के रिक्त पदों को जल्द भरने के दिए निर्देश। रांची के सभी बूथों पर कल से 2 दिवसीय मैपिंग शिविर। राज्य के 8 नए जिलों में जल्द शुरू होंगे आधार सेवा केंद्र। UIDAI ने नागरिकों से सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1947 पर संपर्क करने को कहा। मौसम विभाग ने आज रांची, बोकारो और जमशेदपुर सहित राज्य के कई हिस्सों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी और भारी बारिश की जारी की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी। और हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट सीरीज के लिए झारखंड के 4 प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन, निशांत, नीरज, शौकत और वागीश दिखाएंगे दम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं।

अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है।

स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:46 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। कार्यक्रम माटी की महक सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में मैं संगीता तहे दिल से स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आइए लोकगीतों के इस कार्यक्रम में हम आज आपको सुनवाते हैं गायक कलाकार रीना महतो को। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये पहला लोकगीत।

आकाशवाणी चायबासा से आप इस समय सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम माटी की महक। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कुरमाली लोकगीत कलाकार रीना महतो और उनके साथियों के स्वरों में।

श्रोताओं, रीना महतो और साथियों के स्वरों में गाए हुए इस कुरमाली लोकगीत के साथ ही हमारा आज का ये लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक अब यहीं समाप्त होता है।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी की महक। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

कार्यक्रम विविधा सुनने वाले हमारे तमाम आइए श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बज चुके हैं और सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

कार्यक्रम विविधा सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को मेरा यानी कि आपकी रेडियो सखी संगीता का प्यार भरा नमस्कार जोहार। आकाशवाणी चायबासा से आप इस समय आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम विविधा का। आज के कार्यक्रम विविधा में हम एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हैं आपके लिए अनेकों जानकारियां लेकर, क्योंकि श्रोताओं आप जानते हैं कि आज के कार्यक्रम विविधा में हर दिन हम आपके लिए एक नई जानकारी लेकर हाजिर रहते हैं। तो जानकारियों का ये दौर आज भी बदस्तूर वैसे ही जारी रहेगा। तो श्रोताओं जुड़े रहिए इस कार्यक्रम में हमारे साथ और लेते रहिए जानकारी अलग अलग विषय पर इस कार्यक्रम में। तो श्रोताओं सबसे पहले हम आपको बताएं कि आज है 12 जून और आज के दिन का हमारे कैलेंडर में एक अलग ही महत्व है, क्योंकि आज का दिन हमारे देश के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। हम आपको बताएं श्रोताओं कि आज के का दिन हमें याद दिलाता है कि दुनिया के लाखों बच्चों के हाथों में आज भी कलम की जगह पत्थर, चाय के कप या कारखानों में औजार हैं। तो इसकी वजह है बाल श्रम। तो हम बताएं कि आज 12 जून को हमारा देश मना रहा है बाल श्रम निषेध दिवस, यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट लेबर चाइल्ड। आज हम आपके साथ इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें करेंगे। तो श्रोताओं बाल श्रम हमारे देश के लिए एक अभिशाप है, क्योंकि बाल श्रम इसके बारे में विस्तृत रूप से बताने से पहले श्रोताओं हम आपको बताएं कि ये बाल श्रम निषेध दिवस क्यों मनाया जाता है और कब से इसे मनाया जाने लगा। तो श्रोताओं बाल श्रम निषेध दिवस हर वर्ष 12 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। बाल श्रम गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और जागरूकता की कमी से उत्पन्न होता है, और इसमें छोटे बच्चे जो होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन हम आपको सबसे पहले ये बात बताएं श्रोताओं कि ये छोटे जो बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य है। शिक्षा इनका मौलिक अधिकार है और खुशहाल जीवन इन्हें देना हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो इस ये दिन मनाया जाता है इस संकल्प के लिए कि हम छोटे बच्चों को उनका बचपन जीने दें और उन्हें श्रम करने से रोकें। यानी कि अगर किसी सामाजिक तौर पर उनके ऊपर कोई दबाव बनाया जा रहा है या पारिवारिक तौर से वो इस काबिल नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें और अपने भरण पोषण के लिए अगर उन्हें काम करना पड़ता है या किसी मजबूरी बस उन्हें काम करना पड़ता है या किसी दबाव में उन्हें काम करना पड़ता है, तो ऐसा करने से रोकने के लिए ही आज के दिन को मनाया जाता है। तो श्रोताओं बाल श्रम दिवस मनाने का क्या कारण है, आइए हम आपको ये भी बताते हैं। तो बाल श्रम से तात्पर्य ऐसे बच्चों से है जो कि किसी भी ऐसे काम में लगे हो जिनसे उनको शारीरिक और मानसिक विकास को नुकसान पहुंचता है और उन्हें आवश्यक शिक्षा और खेल से वंचित रखा जाता है। कई बच्चों को हम यहाँ तक देखते हैं कि छोटे जो बच्चे होते हैं घर में खाने पीने की कमी की वजह से या गरीबी के कारण से काम में लग जाते हैं, और ये बच्चे खेती, कांच के कारखानों में, कालीन निर्माण में, पीतल उद्योगों में, माचिस घरों में, और सबसे ज़्यादा जो बच्चे देखे जाते हैं वो है छोटे छोटे होटल में। तो जहाँ वो कप उठाने का काम करते हैं, चाय पकड़ाने का काम करते हैं, तो ये सब खतरनाक कामों को करने के लिए कभी कभी तो उन्हें मजबूर किया जाता है या फिर उनकी मजबूरी होती है कि वो अपने पेट को भरने के लिए इस काम को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये दिन हमने आपको जैसा बार बार बताया कि इस काम को रोकने के लिए ही इस दिन का विशेष तौर पर महत्व है, और हर दिन हर साल इस दिन को एक अलग अलग थीम के साथ मनाया जाता है। और इस साल इस दिन को मनाने के लिए भी एक विशेष थीम बनाई गई है और

0: उसी थीम पर काम करके हम बाल श्रम दिवस को रोकने का जो काम करेंगे। तो श्रोताओं, आइए आज इस विशेष दिन के अवसर पर हम आपके साथ, हम आपको सुनवाते हैं हमारे एक श्रोता विकास दोतराज का जी के विचारों को।
1: बाल श्रम उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन हमें इस ओर ध्यान दिलाता है कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां बाल श्रम की कोई जगह ना हो। आज भी बाल श्रम हमारे समाज में एक काले धब्बे के समान विराजमान है। बाल श्रम बच्चों के भविष्य को अंधकार में बना देता है। आप सब जानते हैं कि बच्चे ही कल का भविष्य है, और एक सभ्य समाज के नागरिक होने के नाते ये हम आप सबका कर्तव्य है कि हम बच्चों को उसके नैसर्गिक और स्वाभाविक विकास के लिए प्रेरित करें। यदि आप अपने आसपास किसी बच्चे को बाल श्रम करते हुए देखते हैं, किसी होटल, खोमचे या ठेले पर काम करता हुआ देखते हैं, तो आप बिना देरी किए उस बच्चे की सूचना चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर दें, जिससे बच्चे को वहां से सुनिश्चित निकाला जा सके और उसके स्वाभाविक विकास के लिए उसका दाखिला किसी विद्यालय में कराया जा सके जहां उसकी पढ़ाई लिखाई सुनिश्चित हो सके। आप सबको पता होगा कि हमारे देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। हमारे संविधान में भी बच्चों के विकास के लिए और उन्हें बाल श्रम से मुक्त रखने के लिए कई प्रावधान बनाए गए हैं। हम सबका यह कर्तव्य है कि हम अपने इन नियमों का ठीक से पालन करें और अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने की अपनी भूमिका का निर्वहन करें। मैं पुनः आप सबसे अपील करता हूं कि हम अपने बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए ऐसे मामलों को नजर आने पर तुरंत कार्रवाई करें और बनाई गई व्यवस्था का पालन करें। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसे मामलों में बेहद गंभीर है और बाल श्रम से बच्चों को मुक्त कराने के लिए बहुत सारी एजेंसियां कार्य करती हैं। चाइल्ड लाइन के अलावा बाल कल्याण समिति भी हर जिले में बनाई गई है, जो बच्चों को रिहेबिलिटेशन के लिए, पुनर्वास के लिए काम करती है। मैं समझता हूँ कि हमारा सजग होना बच्चों को इन कठिन परिस्थितियों से निकालने में सहायक हो।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, वार्ताकार थे विकास दोतराज का। आइए अब इसके बाद हम आपको सुनवाते हैं ये जरूरी संदेश।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

इस जरूरी संदेश के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम विविधा में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के ऊपर। तो आइए हम आपके साथ बात करते हैं और आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं जानकारियों के दौर में। तो श्रोताओं, बाल श्रम रोकना ये हम सबों का मौलिक अधिकार है। हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम बाल श्रम को होने से रोकें, क्योंकि बच्चों का मौलिक अधिकार या फिर हम कहें तो मुख्य अधिकारों में से एक है शिक्षा ग्रहण करना और भविष्य में अच्छा जीवन व्यतीत करना। और इसके लिए इन्हें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है शिक्षा की। तो अगर आप अपने आसपास कहीं भी होटल पे, खोमचे पे यानी कि ठेले पे, या फिर किसी भी कल कारखाने में या किसी घर में बच्चों को काम करता हुआ देखते हैं, तो आप जल्द से जल्द इसकी कंप्लेन करें और आप वहाँ कंप्लेन करें जिससे कि बच्चों को वहाँ पर रेस्क्यू कर सकते हैं। और अगर बच्चों की कंप्लेन करने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 यानी कि 1098 पर आप कॉल करें, आपकी एक कॉल किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। और आपका भी एक नैतिक कार्य है श्रोताओं कि आप अपने घर पर, दुकान पर या किसी भी ऐसी जगह किसी ऐसे छोटे बच्चे को काम पर बिल्कुल भी ना रखें कि उनका भविष्य खराब हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पैसों को बचाने के चक्कर में छोटे छोटे बच्चों को काम पर रख लेते हैं जिससे उन्हें हमें ज़्यादा पैसा ना देना पड़े और वो आपका ज़्यादा काम कर सकें। लेकिन हमें स्वार्थी बिल्कुल भी नहीं होना है श्रोताओं, और बच्चों के भविष्य को बचाने की चाह हमेशा अपने दिल में हमें जिंदा रखनी है और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। इसके लिए हमारी राज्य सरकार और भारत सरकार जो दोनों मिलजुल कर काफ़ी अच्छा काम कर रही है और कोशिश कर रही है दिन प्रतिदिन कि बच्चों को बाल श्रम से बचाया जा सके और उन्हें शिक्षा की राह में आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि कई बार बच्चे खाने के अभाव में काम पर लग जाते हैं, इसलिए उन्हें स्कूल में ही मिड डे मील देने का भी की भी व्यवस्था की गई है। और

के अलावा उन्हें कॉपी किताब भी स्कूल में फ्री दे जाने लगे, जिससे कि बच्चे प्रेरित हो और पढ़ाई करने के लिए स्कूल आ सकें। और इसके अलावा एक और जो अहम बात हम आपको कहना चाहेंगे श्रोताओं, कि जैसा कि हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि बच्चों को बाल श्रम से बचाएं, तो आप कहीं भी अगर ऐसे छोटे बच्चों को देखें जिनकी उम्र 6 साल से 14 साल के बीच में है और उन्हें आप किसी भी तरह के काम को करते हुए देख रहे हैं जो कि उनकी जीविका को चलाने के लिए हो, तो आप ऐसे में इसकी सूचना ज़रूर से ज़रूर चाइल्ड लाइन हेल्प नंबर 1098 पर दें। आपका एक कॉल, आपकी एक पहल बच्चों की ज़िंदगी को बचा सकती है। तो आइए संकल्प लें कि हर बच्चे के हाथ में किताब होगी, कोई भी बच्चा भूखा और बेबस नहीं होगा, और भूख और बेबसी के कारण वो काम करने या नहीं जाएगा। बचपन खेलने और पढ़ने के लिए होता है श्रोताओं, काम करने के लिए नहीं। बाल श्रम को ना कहें और शिक्षा को हाँ कहें। तो आप अभी हम आपको जानकारी दे रहे थे बाल श्रम दिवस के निषेध दिवस के बारे में। आइए अब इसके बाद हम आपका मनोरंजन करते हैं इस गीत के साथ।

जागो जागो जागो, सुबह हो गई, जल्दी से ले लो चाय, ठंडी हो गई।

0: चल फोट भाग जा, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? वो भी तो सोया पड़ा है।
1: ए, ए विलन बच्चा, ये क्या करता है?
2: अरे कसरत करता है, देखता नहीं क्या तू?

0: तो आए।
1: अरे अरे ठीक से पूजा तो करने दो मुझे, सारा दिन झगड़ा ही कर रहे हो क्या है?
2: अरे साला, अभी तक लड़े रहे तुम लोग?
3: अरे छोटू, अरे तेरी तो
2: अपन को हाथ नहीं लगाना।
4: नीचे खड़ा है
5: साला, पैसा

देखो तो साला बाल भी ले जाएगा माल भी ले जाएगा, धंधा तेरा अच्छा हर हाल में कमाएगा, और अपन को देखा आटा भाई साला रोज लगाएगा रोज हार जाएगा।

0: गालियां।
1: आज तुझे ऊपर वाला कुछ देने वाला है,
2: सच्ची मुची कुछ देने वाला है।
1: आज तुझे ऊपर वाला कुछ देने वाला है, छप्पर फाड़ के ही कुछ होने वाला है।
0: अपड़िया देखा मरवा दिया ना कलिया को।

0: इस गीत के साथ श्रोताओं हम आपका मनोरंजन कर रहे थे। आइए अब इसके बाद हम आपको सुनवाते हैं ये जरूरी संदेश।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: आले नगे नेहर में बोले नुकान परिस्थिति रे बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ना धरार आम बोले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये
4: नाम मंगलो राय को गाँव बड़गड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रनबला देवी कहाँ बारे हतो तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
6: मुतम बुरा मिसिंग तामसाय अनिता तामसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुकुर मिना जापा में रिया तपा में रिया वा बेटा मिका
7: अन्या मतुम दो बुंबाई कोड़ा पटन मतुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन मतुम कितमाई कोड़ा मुनी में बुरुड़ी ने बागिया तोड़ के यूं दुना से आरती कोलो पुलिस कोलो मी लड़ाई चलाओ तमे बुरुड़म को यहाँ तब जाए तेरे काका गुंगो उन्हें बुको को काको मेल मिया
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लिंग से जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया नु तुम ते ना मिल आप ही लेते ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे थे जरूरी संदेश और इस संदेश के बाद श्रोताओं आइए एक जरूरी आप सभी के साथ बात हम करना चाहेंगे कि बचपन को जीवन का सबसे अच्छा समय माना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह बात कुछ बच्चों के लिए सच नहीं हो पाती। जो अपने बचपन के दौरान जीवन यापन के लिए संघर्ष करते हैं, बाल श्रम परियोजना और जनगणना के अनुसार भारत में लाखों से ज़्यादा बच्चे श्रम में लगे हुए हैं और इन बच्चों में भी लड़कियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। पहले बच्चे अपने माता पिता को कृषि के बुनियादी कामों में मदद करते थे, जैसे बुआई कटाई, फसल काटना, पशुओं की देखभाल और घर के कामों में, लेकिन उद्योगों और शहरीकरण के विकास के साथ ही साथ बाल श्रम की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत ही कम उम्र में ही बच्चों को विभिन्न अनुचित कार्यों में लगा दिया जाता है, जो कि उन्हें शारीरिक दृष्टि से भी नुकसान पहुंचाती है और आर्थिक दृष्टि से भी, और उन्हें अपनी कोमल उंगलियों से खतरनाक चीज़ें बनाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। बच्चों का मन कोमल और निश्चल होता है, उन्हें ऐसे में काफ़ी कष्ट झेलना पड़ता है और वो न जाने कितने ही कारखानों में कितनी जगह होटलों में काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं अपनी आर्थिक अव्यवस्था के कारण। तो श्रोताओं, बाल श्रम एक अपराध है। बाल श्रम को अपराध घोषित करने वाले सख्त कानून के बावजूद भी भारत और दुनिया के कई अन्य देशों में बाल श्रम आज भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में किया जा रहा है। तो ऐसे में ज़रूरी है बाल श्रम पर रोक लगाना। और कई बार कम आय वाले परिवार बुनियादी मानव अधिकारों की अनदेखी करते हुए अपने बच्चों को अतिरिक्त आय कमाने के लिए भेज देते हैं। यह एक व्यवस्थागत समस्या है जिसे कई स्तरों पर संबोधित करके हल करने की आवश्यकता है। हाल छोटे बच्चों को इस तरह से शोषण से बचाने के लिए भारत सरकार ने दंड का एक सेट तैयार किया है। कोई भी व्यक्ति जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम करवाता है और या फिर उसे काम पे रखता है, अगर उसकी सूचना उन्हें मिल गई, सरकार को दे दी गई या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे कर दी गई, तो उसे उन्हें सजा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप से हम बार बार ये कहना चाहेंगे कि गरीबी से त्रस्त बच्चों का राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। इन वंचित बच्चों को स्वस्थ और अनुकूल वातावरण प्रदान करना समाज और सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है और सरकार इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। और आपसे भी ये अपील है कि आप भी बाल श्रम निषेध को करने में सरकार की मदद करें और किसी भी ऐसे बच्चे को, छोटे बच्चे को काम पर बिल्कुल ना रखें। और अगर ऐसे किसी बच्चे को आप काम करते हुए देखते हैं तो इसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर दें और बच्चे के भविष्य को सुधारें। आइए हम सभी ये संकल्प लें कि हम ना कहेंगे बाल श्रम को। और इसी के साथ श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी ने अभी इशारा कर दिया है कि कार्यक्रम से विदा लेने का वक्त हो चला है। तो अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी संगीता को विदा दें। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं आज का अगला कार्यक्रम, फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन।

करते हैं कार्यक्रम रस रंजन की शुरुआत और सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म क्रिस से। आवाजें हैं गायक कलाकार श्रेया घोषाल और सोनू निगम की।

फिल्म आरजू का ये गीत आपने सुना गायक कलाकार कुमार शानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला गीत, गायक कलाकार कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाजों में फिल्म कुछ ना कहो से।

क्या दिल ने कहा। कार्यक्रम के आखिर में सुनवा रहे हैं इसी फिल्म से ये गीत। आवाजें हैं गायक कलाकार शान और अलका याग्निक की।

श्रोताओं, अलका याग्निक और शान के स्वरों में गाए हुए फिल्म क्या दिल ने कहा कि इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम रसरंजन अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम रसरंजन।

FM के 101.7 MHz पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 10 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं NCERT के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
1: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
1: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी

0: की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
1: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
0: जी
1: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
0: जी
1: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है।
0: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में, इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
1: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
0: जी
1: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
0: जी
1: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
0: यहाँ से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
1: श्रोताओं, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
0: जी
1: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
0: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
1: जहाँ तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
0: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
1: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं जैसे
0: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
1: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओं, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अब ये एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी
1: काम बड़े करके दिखलाती
2: काम बड़े करके दिखलाती
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की
1: हमको यही सिखाती चींटी
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आपने सुना NCERT के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

FM के 101.7 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायपासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ ही देर में सुबह के 10:30 होने वाले हैं। हमारा आज का अगला प्रसारण आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का होगा, जो कि प्रसारित किए जाएंगे हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। तो आइए इन कार्यक्रमों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: दोस्तों कहते हैं मुस्कान को तभी रोकिए जब वो किसी को चोट पहुंचा रही हो, वरना खिलखिलाकर हंसते रहिए। और तो ऐसी ही मुस्कुराहट के साथ जोहार रांची कार्यक्रम में एक बार फिर विनीता है आपके साथ, और आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ है
1: रजनी।
0: आप सबों को हमारा
1: जोहार,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो रजनी कैसी हैं आप?
1: मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ, मैं अपने आप को बहुत अच्छी मानती भी हूँ।
0: देखिए सबसे अच्छी बात यही है कि आप जो खुद को महसूस करते हैं वही लोगों में भी बांटेंगे ना।
1: हाँ हाँ
0: अच्छा,
1: बिल्कुल
0: करेंगे तो अच्छा अच्छा ही होगा हमारे साथ, दूसरों के साथ। और जैसा कि मैंने कहा कि मुस्कुराते रहना चाहिए, है ना? तो चलिए इसी मुस्कुराहट के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: एक बार फिर स्वागत है आपका जोहार रांची कार्यक्रम में और आप हैं विनीता और रजनी के साथ। तो अब वक्त है सुविचार का। तो जिस प्रकार मिट्टी का गीलापन पेड़ की जड़ को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी प्रकार शब्दों का मीठापन हमारे रिश्तों को पकड़ कर रखता है। क्यों, आप मानती है ना?
2: बिल्कुल, वो कहते भी है ना कि वाणी से ही खुशी, वाणी ही गम का कारण, वाणी ही पीड़ा और वाणी ही मरहम। तो इसलिए अपने शब्दों को, व्यवहार को हमेशा सरल रखें, क्योंकि रिश्ता दिल से बनने से पहले आपके बोली और आपके व्यवहार से बनता है। तो बस शब्दों में, बातों में, व्यवहार में हमेशा मीठापन बनाकर रखें और सबके ही चहेते बन के रहें।
1: बिल्कुल।

0: तो प्यारी प्यारी बातों के बाद अब कुछ बातें मौसम की कर लेते
1: हाँ बिल्कुल, आजकल मौसम तो एकदम टॉपिक बना हुआ है हमारा, आए दिन कुछ न कुछ उसमें चेंजेस देखने को।
0: हंगामेदार
1: हाँ
0: हंगामेदार
1: हंगामेदार।
0: तो मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने 2 से 3 दिनों में मानसून आ सकता है ऐसी बातें कही हैं। और जैसा कि हमने कल देखा
1: लग तो रहा है कि आने का

0: अनुमान क्या आ ही
1: राजधानी और
0: गया।
1: उसके आसपास के क्षेत्रों में कल मौसम का मिजाज काफी तेजी से बदला।
0: बहुत
1: सुबह
0: बहुत
1: इतनी कड़ी धूप थी, लेकिन 2 बजते बजते मूसलाधार बारिश से पूरा शहर डूब गया, है ना। और आसमान में काले बादल छा गए और 2-3 घंटे तक गरज के साथ, तेज हवा के साथ बारिश हुई।
0: काफी जोरदार बिजली भी कड़क रही
1: काफी
0: थी।
1: बिल्कुल कई पेड़ उखड़ गए, है ना। तो
0: हाँ
1: इस बदलते मौसम में आप कुछ कहना चाहेंगे रजनी, हमारे श्रोताओं को?
0: कहना तो यही चाहूंगी कि अभी जैसे मानसून आ ही गया है, बिल्कुल पहुंच ही गया है, और ऐसे में हम लोग देखते हैं कि बिजली काफी गरजने लगती है, पेड़ वगैरह भी गिरने लगते हैं, काफी नुकसान भी होता है। तो अगर आप इस वक्त कहीं बाहर जा रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें अपना। एक तो छाता वगैरह लेकर चले, कोशिश करें कि बच्चों को अगर नहीं ही लेके जाएं कहीं तो बाहर में वो ठीक रहेगा। और बारिश अगर आने वाली है, आ रही है, तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाएं या अपने काम को जल्दी से जल्दी खत्म कर लें, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान होने की भी संभावना रहती है।
1: और जहाँ तक मौसम विभाग का अनुमान है कि वज्रपात
0: हाँ
1: होने की
0: बिल्कुल।
1: संभावना भी है, तो ऐसे मौसम में हो सके तो अगर बारिश में आप घिर जाएं तो पेड़ के नीचे ना खड़ा
0: ना
1: रहें,
0: रहे मतलब सरकार जो गाइडलाइंस जारी करती
1: वो
0: है ना
1: उसका
0: उसका
1: ध्यान
0: ध्यान
1: रहे।
0: रखे आप, तो
1: हाँ
0: आप बच
1: बिल्कुल
0: सकते हैं।
1: बिल्कुल। और
0: और
1: ऐसे भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: आप समझ सकते हैं कि इस मौसम में आपको खास ख्याल रखना है। अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना
0: बाहर ना
1: निकले।
0: निकले।
1: देखिए, आधे घंटे का समय तो मुझे लगता है कि मिलता है, मौसम जिस तरह से
0: हाँ
1: बदलता
0: हाँ
1: है, तो
0: हाँ
1: आप
0: बिल्कुल
1: अगर घर के
0: बिल्कुल,
1: आसपास है तो घर लौट
0: घर
1: जाएं,
0: लौट जाएं,
1: बच्चे और बुजुर्गों का खास ख्याल
0: खास ख्याल रखें।
1: रखें।
0: और आज अगर हम लोग पूर्वानुमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 35.5 सेल्सियस रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 21.5 सेल्सियस रहने की
1: यानी
0: संभावना
1: कि
0: है।
1: तापमान में गिरावट तो थोड़ी सी आई है, लेकिन फिर भी गर्मी तो है ही, है
0: गर्मी
1: ना।
0: तो है ही। हाँ
1: तो इस मौसम में ख्याल रखें अपना।

0: तो अब जोहार रांची कार्यक्रम में वक्त है आज के इतिहास को जानने का, क्यों रजनी?
1: हाँ बिल्कुल, हम
0: क्या
1: बता दें अपने श्रोताओं को कि इतिहास में आज के दिन में क्या हुआ
0: क्या हुआ
1: था।
0: था। और वैसे भी देखिए तो इतिहास एक दिन में तो नहीं बनता, लेकिन एक दिन अपने अंदर बहुत कुछ समेट कर समा कर रखता है। और देखा जाए तो इतिहास में हर दिन का एक अपना अलग महत्व है। तो चलिए ना, आज जानते हैं आज के दिन क्या क्या खास हुआ था। तो आज ही के दिन फिलीपींस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 1898 में आज ही के दिन फिलीपींस को स्पेन से आजादी मिली थी।
1: 2002 में आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों ने बाल मजदूरी के विरोध में विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस मनाने का फैसला किया था। इसे बाल श्रम को समाप्त करने और बालकों के अधिकारों की रक्षा के लिए 2002 में शुरू किया गया था।

0: 12 जून के इतिहास की बातें हो रही हैं, तो आपको बताएं कि 1991 में आज ही के दिन रूस ने आजादी की घोषणा करते हुए रूस दिवस मनाना शुरू किया था, और 1665 में आज ही के दिन न्यू एम्स्टर्डम कानूनी तौर पर ब्रिटेन का हिस्सा बना था, और यॉर्क के ड्यूक के नाम पर इसका नाम न्यूयॉर्क रखा गया था।
1: काफी अच्छी जानकारी दी आपने, तो मैं भी अपने श्रोताओं को कुछ जानकारी दे देती हूँ कि 12 जून 1987 यानी कि 1987 को ब्रिटिश चुनावों में मार्गरेट थैचर की तीसरी बार ऐतिहासिक विजय हुई थी, यानी वो उस दिन तीसरी बार लगातार जीती थी। 2001 में सीमा मुद्दे पर भारत बांग्लादेश वार्ता शुरू हुई थी, और 2007 में कनाडा में होने वाले जीव विज्ञान ओलंपियाड में 4 भारतीयों का चयन हुआ था। काफी गर्व की बात है ये।
0: बिल्कुल। और 2008 में दक्षिणी एशियाई फुटबॉल महासंघ वर्ष 2009 के लिए छठी सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई थी, और 2008 में ही प्रख्यात फिल्म निदेशक मृणाल सेन को 10वें ओशियाना सीन फैन फिल्म समारोह में पुरस्कृत किया गया था।
1: 2016 में साइना नेहवाल ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता था, ये भी हमारे लिए काफी गर्व की बात है। तो इतनी सारी चीजें आज

0: बातें हो रही है आज के दिन की, तो अब उनकी भी बातें करते हैं जिनका है आज जन्मदिन।
1: जन्मदिन।
0: तो गीतांजलि श्री, जो कि हिंदी की जानी मानी कथाकार और उपन्यासकार है, उनका जन्म आज ही के दिन यानी कि 12 जून 1957 में हुआ था। वो हिंदी की पहली ऐसी लेखिका थी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार उन्हें उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया था।
1: इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, तो मैं भी कुछ अच्छी
0: बिल्कुल
1: जानकारी दे दूं कि सूरजबाई खांडे, जो कि छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध भरतरी गायिका थी, उनका जन्म 12 जून 1949 यानी 1949 में आज के दिन हुआ था। और उन्हें 1986-87 में सोवियत रूस में हुए भारत महोत्सव का हिस्सा बन

0: ने का भी मौका मिला था।
1: और आज के दिन 1932 में भारतीय अभिनेत्री और भरतनाट्यम नर्तकी पद्मनी का भी जन्म हुआ था।
0: 12 जून 1935 की अगर बात करें तो भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री श्यामा का जन्म भी आज के दिन हुआ था। ये 1950 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थी। शुरुआत में तो ये फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए थे, लेकिन 1952 में बनी फिल्म श्रीमती जी से इन्हें असली पहचान मिली। इन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया। तो चलिए इन्हीं की फिल्म से एक गाना सुन लेते हैं,
1: प्यारा सा गाना।

0: अच्छा रजनी, अब हमने इतिहास की बातें तो कर ली, तो अब कुछ आज के दिन की बातें करें।
1: हाँ बिल्कुल,
0: समझ रही हैं?
1: क्या इशारा है
0: मैं हेल्थ की
1: आपका?
0: बात कर रही हूँ, क्योंकि ये कल भी ठीक रहना चाहिए, आज भी
1: आज भी
0: ठीक
1: ठीक
0: रहना
1: है।
0: चाहिए, और आने वाले दिन में भी ठीक ही
1: हाँ,
0: रहना
1: और सबसे
0: चाहिए।
1: बड़ा धन तो हमारा स्वास्थ्य ही
0: हेल्थ
1: है।
0: इज वेल्थ, है ना? तो बारिश के मौसम है, जैसा कि हमने बताया कि अब बारिश शुरू होने वाली है, मतलब बरसात का मौसम अब आने वाला है। तो इस मौसम में आप कैसे ख्याल रखें, ये इस पर कुछ जानकारी हम दे देंगे। वैसे हमें पता है कि आपको सारी बातें
1: पता है, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि
0: कि
1: हम
0: हम
1: आपको फिर
0: आपको
1: से बातें
0: समय
1: बताएं।
0: समय पर याद
1: हाँ,
0: दिलाते
1: क्योंकि
0: रहें।
1: हमें है आपके फिक्र, आप है
0: बिल्कुल,
1: हमारे प्यारे प्यारे श्रोता।
0: तो हमें
1: हाँ,
0: बहुत फिक्र है ना? तो चलिए कुछ जानकारी दे देते हैं। तो रजनी बताइए कि क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस मौसम में?
1: कि बारिश के मौसम में जो सबसे ज्यादा वो दिक्कत होती है ना, वो हमारे पाचन शक्ति को लेके होती है। बारिश में हमारी पाचन शक्ति काफी कमजोर हो जाती है, जिससे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो हमेशा ताजा खाना खाएं, फिल्टर के हुआ पानी पिए, उबला पानी पिए, और अपने आप को फंगल इन्फेक्शन से बचा के रखें।
0: यानी कि मच्छरों से बचा कर रखें।
1: हाँ, सही कहा आपने, ये बात मैं भूल गई थी। ठीक कहा, इस मौसम में ना त्वचा संबंधी बीमारियां भी काफी हो जाती है,
0: काफी हो
1: काफी कीड़े
0: जाती है,
1: मकोड़े हो जाते हैं।
0: तो मच्छरों से बचकर रहना चाहिए। अगर हो सके तो मच्छरदानी का उपयोग जरूर करना चाहिए, और आसपास पानी जमा नहीं होने
1: नहीं होने
0: देना
1: देनी,
0: चाहिए, क्योंकि उसी से मच्छर पनपते हैं और
1: नालियों की सफाई करते
0: तरह
1: रहें,
0: तरह की बीमारियां
1: बीमारियां
0: होती
1: भी
0: हैं,
1: फैलती हैं, काफी बीमारियां फैलती
0: खासकर
1: हैं।
0: छोटे छोटे बच्चों को। तो इसके अलावा जैसा कि रजनी ने बताया कि खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए, यानी कि बाहर का स्ट्रीट फूड, यानी कि नून चाट
1: हाँ,
0: फुचका, है
1: नहीं
0: ना,
1: नहीं
0: वो
1: बिल्कुल
0: सब
1: नहीं।
0: नहीं खाना चाहिए। तो साथ ही बहुत ज्यादा देर तक कटी हुई सब्जियां या सलाद खाने से बचें, क्योंकि इनमें बैक्टीरिया
1: बैक्टीरिया
0: होते हैं।
1: होते हैं।
0: तो घर का बना गर्म और हल्का खाना खाएं, पानी हमेशा उबाल कर वाटर फिल्टर से साफ करके पिए, है ना, और साथ साथ जैसा कि हमने बताया कि घर के आसपास साफ सफाई का ख्याल रखें।
1: और आपके घर में भी कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें, आपके किचन में, आपका किचन तो खजाना है, तो
0: हाँ
1: आप वहां से कुछ सामान को यूज कर सकते हैं, और जो दवाइयां, बाहर की दवाइयां खाने से बच सकते हैं। आप उबला पानी जब पी रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसमें आप अजवाइन उबाल के पिए, आप सौंफ की चाय पी सकते हैं, उसके काढ़ा बना के पी सकते हैं, मेथी भिंगो के आप सुबह में खाली पेट पी सकते हैं, और सबसे बड़ा रामबाण तो मैं बता रही हूँ, छोटी सी चीज 5 रुपए में आपको मिल जाती है, नींबू।
0: नींबू सबसे अच्छी बात है ना, और ये
1: स्किन
0: पाचन के साथ साथ स्किन के लिए भी अच्छा
1: के लिए
0: है।
1: भी, और इम्यूनिटी तो हमारी बिल्कुल स्ट्रांग कर देती
0: बिल्कुल,
1: है।
0: पर हाँ खास ख्याल रखें कि अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो नींबू का यूज थोड़ा सा कम करें।
1: खाली पेट ना करें, हो सके तो
0: हाँ
1: कुछ खा के
0: खा
1: अगर
0: कर
1: आप कर
0: करें।
1: सकते हैं,
0: हाँ
1: या
0: हाँ
1: फिर दाल में आप मिला के ले सकते हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो टेस्ट भी बढ़ जाता है, और आप इस तरह से सेवन कर सकते हैं।
0: तो देखिए, है तो छोटी छोटी बातें, लेकिन अगर हम ख्याल रखें तो उम्मीद करते हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत
1: जरूरत
0: नहीं
1: नहीं
0: पड़ेगी।
1: पड़ेगी।
0: लेकिन हाँ, ऐसा ना हो कि किसी बीमारी को हम बढ़ा ले और डॉक्टर के पास देर से जाए। तो आप घरेलू इलाज करें, पर समस्या अगर ज्यादा बढ़ गई हो तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें, क्योंकि इस मौसम में कोई भी बीमारी ज्यादा जल्दी फैल जाती
1: फैल
0: है ना।
1: जाती है।
0: तो हमारी और रजनी की बातों का ख्याल रखें, और इस मौसम का मजा लेते हुए चाय पकौड़ों के साथ, लेकिन घर के।
1: बिल्कुल।

0: तो अब कुछ बातें घूमने फिरने की करते हैं, क्यों
1: हाँ हाँ काफी
0: रजनी?
1: देर हम लोग बैठ गए यहाँ पे, चलिए घूम के आते
0: तो
1: हैं।
0: अब मौसम के हिसाब से आपको जगह की जानकारी देंगे ताकि इस गर्मी में थोड़ी सी राहत मिल सके। तो अगर अभी तक आपने शिलोंग नहीं घूमा है तो आप यहाँ की सैर कर सकते हैं। शिलोंग मेघालय की राजधानी है और एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं। इसे उत्तर पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। ये हिल स्टेशन उत्तराखंड हिमाचल की तरह ही प्रकृति के गोद में बसा हुआ है।
1: यकीन मानिए, यहाँ के जो पहाड़ हैं और हरियाली है वो आपका दिल जीत लेगी, और यहाँ के मौसम की बात तो आप बस पूछिए ही मत, मन

0: तो बातें हो रही हैं शिलोंग की, तो चलिए यहाँ की घूमने वाली जगहों के बारे में सबको बताते हैं। तो यहाँ शिलोंग पीक, लेडी हैदरी पार्क, कैलोंग रॉक, वॉट झील और मीठा झरना जैसी कई देखने लायक जगह है। आप हिल स्टेशन में ट्रैकिंग और कैंपिंग भी कर सकती हैं, क्यों रजनी?
1: बिल्कुल, अब आपने इतनी जगह घुमाया तो मैं भी अपने श्रोताओं को कहीं
0: बिल्कुल
1: घुमा देती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आप उमियम झील, हाथी झरना, मौसिन राम गांव और जैक्रम हॉट स्प्रिंग की सैर भी कर सकते हैं। और यहाँ है डेविड स्कॉट ट्रेल, जो कि यहाँ का फेमस ट्रैकिंग ट्रेल है। ये ट्रेल 16 किलोमीटर का है और यहाँ आप एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। यहाँ के सुंदर पगडंडी पर ट्रैकिंग करते हुए आप कई झरनों को भी देख सकते हैं।
0: बिल्कुल, और अगर आपको मेघालय की जनजातीय संस्कृति और इतिहास के बारे में जानना है तो आप डॉन बॉस्को संग्रहालय भी जा सकते हैं। ये संग्रहालय 7 मंजिला है और इसमें 17 गैलरी है। वैसे तो आप यहाँ कभी भी जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम है मार्च से नवंबर तक।
1: इस बीच यहाँ आप अच्छे से घूम सकते हैं। यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट शिलोंग एयरपोर्ट है और नजदीकी रेलवे स्टेशन गुवाहाटी है। तो बस प्रोग्राम बनाइए और निकल पड़िए बच्चों और परिवार के साथ यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखने को।

0: तो रजनी जी के साथ हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में। तो चलते चलते बस इतना ही कहेंगे हम अपने श्रोताओं को कि तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं, समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। तो सारे टेंशन को हटाकर मुस्कुराकर जीना शुरू कीजिए, फिर देखिए लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी।
1: बिल्कुल, तो इन्हीं बातों के साथ विनीता
0: और रजनी को दे इजाजत।
1: नमस्कार,
0: जोहार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अपनी दोस्त विनीता के साथ।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: घटपड़े भारतीय सेना।
1: तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं यस बॉस फिल्म के गीत के साथ। अभिजीत की आवाज में इस गीत को हम सुनेंगे और संगीत है जतिन ललित का। और इस गीत को सुनने की फरमाइश आई है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, चैतिक विरक और मीका विरक की।

और आइए अब सुनते हैं फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म का गीत, अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की आवाज में। और इस गीत को सुनने की फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लछनपुर से विश्वनाथ साहू। तो चलिए इन सब की पसंद का गीत सुनते हैं। फिल्म है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।

और आइए एक बार फिर सुनते हैं अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में चलते चलते फिल्म का गीत। संगीत जतिन ललित का है और इस गीत की फरमाइश आई है राजा बाजार बिहिया से सुरेश केशरी, पूनम केशरी और प्रतीक केशरी की।

और आइए अब सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में बहुत ही खूबसूरत सा गीत। जिस गीत को सुनने की फरमाइश आइए गोंदा टाउन कांके रोड रांची से रमेश प्रसाद जायसवाल, भीम सिंह, अनुप्रिया भगत की।

और कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं जब वी मेड फिल्म का गीत श्रेया घोषाल की आवाज में। और इस गीत को सुनना चाहे है बड़बुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेतान, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनिमिका और उत्कर्ष नेताम ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। दिन के 12 बजने वाले हैं और ये वक्त है बहनों के पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का, जिसे लेकर आज आपके साथ है राखी और शिल्पी।

0: बहनों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। इस खूबसूरत से सफर में आपकी हम सफर हैं, हम दो सखियां। मैं हूं राखी और मेरे साथ हैं आपकी प्यारी सी हंसमुख सी सखी, एक मीठी सी मुस्कान लिए आपसे मुखातिब होने के लिए तत्पर।
1: बहनों आज मैं आपके साथ हूं शिल्पी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। हाँ। सखियों बचपन का वह सुनहरा अध्याय जहां सपनों को पंख मिलते हैं, यह जीवन का वह हिस्सा है जहां हर व्यक्ति एक बार लौटने की कल्पना अवश्य करता है।
0: मासूम निश्चल कोमल सा बचपन जहां बेफिक्री शरारत और शैतानियों की कहानियां लिखी होती है ना शिल्पी। परियों की कथा के बीच ये विश्वास भी होता है कि कोई सुंदर से पंखों वाली परी आएगी और वो सब कुछ दे जाएगी जो हमारी कल्पना में है।
1: हाँ राखी, अब माता पिता का संघर्ष दिखता तो है लेकिन समझने की समझ कहाँ होती है तब। एक सुरक्षा घेरा होता है जिसके अंदर कोई भी दुख प्रवेश नहीं कर सकता।
0: लेकिन शिल्पी ये सुरक्षित और बेफिक्र बचपन सबको कहाँ नसीब होता है। कितनी तकलीफ होती है ना जब किसी दुकान होटल कारखाने या घर में छोटे बच्चों को काम करते हुए देखते हैं हम। नन्हे हाथों में किताबों की जगह जूठे बर्तन, जिस थाली में पौष्टिक स्वादिष्ट आहार होना चाहिए वहां रूखा सूखा आधा अधूरा भोजन।
1: आखिर तुमने बहुत भावुक बात कही, नंगे पांव फटे पुराने कपड़ों में मेहनत मजदूरी करते ये मासूम बच्चे किसी भी संवेदनशील इंसान को विचलित करते हैं। ये बाल श्रम एक जुर्म है बहनों, कानूनी अपराध है। आज बाल श्रम निषेध दिवस है इसलिए हमने ये बात आपसे कही और इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2002 में की गई थी।
0: और इसका मुख्य उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक जागरूकता फैलाना और बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जो है जागरूक कराना और समाज को भी इस दिशा में जागरूक कराना है। और बाल श्रम को रोकने के लिए बाल श्रम अधिनियम 1986 है, इसे संशोधित करके संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा अधिक सख्त बना दिया गया है।
1: हाँ बहनों, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना कानूनी अपराध है। बच्चों को किसी भी उद्योग व्यवसाय या कारखानों में काम पर रखना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आपके परिवार के किसी वैध व्यवसाय में बच्चे सहायता कर सकते हैं।
0: हाँ, ये अगर परिवार का व्यवसाय हो तब है ना। और बाल श्रम कानून का उल्लंघन करने वालों को 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक कारावास की सजा हो सकती है, ये सबके लिए जानना जरूरी है। और साथ ही साथ आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति एक बार दंड के बाद दोबारा फिर से ये काम करता है और दोषी पाया जाता है तो उसे 1 से 3 साल तक की सजा भी हो सकती है।
1: बिल्कुल राखी, और किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वेबसाइट या टोल फ्री नंबर 1098 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो बाल श्रम कानूनी अपराध है और अगर ऐसा देखते हुए आप कहीं से गुजरे तो जरूर इस संबंध में कदम उठाएं। बहनों बच्चों का जो बचपन है उसे सुरक्षित रहने दें क्योंकि बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं ना शिल्पी।
1: बिल्कुल।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के

0: बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
7: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
8: आरबीआई कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: बहनों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। और आज के सफर में मैं हूँ शिल्पी।
3: और शिल्पी, अब आगे बहनों को कुछ जानकारियां दिलवाएंगे हम एक भेंटवार्ता के माध्यम से। और आज का विषय हमने रखा है सोशल मीडिया के दौर में खोता जा रहा बचपन। आज बच्चों पर चर्चा भी की हमने, तो इस संदर्भ में जानकारी दे रही हैं प्रिया गुप्ता और उनसे बहनों बातें कर रही हैं हमारी प्यारी सखी शिल्पी।
4: सखियों, जरा याद कीजिए अपना बचपन। गली मोहल्ले में सखियों के साथ खेलना, दौड़ना, पेड़ों पर चढ़ना, दादी नानी से परियों की कहानियां सुनना और छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाकर हंसना, याद है ना? लेकिन आज का बचपन कुछ बदल सा गया है। अब बच्चों के हाथों खिलौने, गुड़िया की जगह मोबाइल है, मैदान की जगह स्क्रीन है और दोस्तों की जगह फॉलोअर्स, लाइक्स और कमेंट्स की दुनिया में कहीं ना कहीं बचपन की मासूमियत, शरारतें और खुलापन सिमटता जा रहा है। सोशल मीडिया ज्ञान और मनोरंजन का एक अच्छा माध्यम है, लेकिन जब इसका उपयोग आवश्यकता से अधिक होने लगे तो बच्चों के स्वास्थ्य, पढ़ाई पर असर पड़ने लगता है। तो आइए आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम एक नजर डालते हैं कि आखिर सोशल मीडिया बच्चों का मित्र है या उनके बचपन का चोर। इस संदर्भ में बातचीत के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ी हैं। आप हैं प्रिया गुप्ता। प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। नमस्कार।
5: नमस्कार शिल्पी जी।
4: प्रिया जी, सबसे पहला सवाल है कि सोशल मीडिया बच्चों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा

0: उनका तनाव बढ़ सकता है। उसके बाद नींद की समस्या आती है, देर रात तक मोबाइल चलाने से नींद भी प्रभावित होती है, साइबर सुरक्षा का खतरा भी बढ़ा रहता है, गलत जानकारी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर बुलिंग जैसी समस्याओं का ने सामना करना पड़ सकता है। हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया एक उपयोगी साधन है, लेकिन इसका संतुलित और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग आवश्यक है। बच्चों को सीमित समय के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए तथा पढ़ाई, खेलकूद और परिवार के साथ उन्हें ज्यादा समय बिताना चाहिए।
1: जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत सारी बात आपने बताई, लेकिन हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे ज्यादा वक्त, जैसा कि आपने कहा कि बच्चों को बाहर खेलना चाहिए, परिवार से घुल मिलकर रहना चाहिए, बातचीत आजकल हमारे बच्चे कम करते हैं क्योंकि ये स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताते हैं, तो इसका स्वास्थ्य पर, विशेष रूप से स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है बच्चों का, ये बताइए।
0: होता क्या है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। लंबे समय तक मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन देखने से आंखों में दर्द, सूखापन और दृष्टि संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा बच्चों की शारीरिक गतिविधियां भी कम हो जाती है, जिससे मोटापा और फिटनेस संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ता है। अत्यधिक स्क्रीन टाइम से नींद की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, जिसके कारण थकान, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता में कमी आ सकती है। साथ ही बच्चों में तनाव, चिंता और सामाजिक अलगाव जैसी मानसिक समस्याएं भी बढ़ सकती है। इसीलिए बच्चों के लिए स्क्रीन का उपयोग सीमित और संतुलित होना चाहिए तथा खेलकूद, पढ़ाई और पारिवारिक गतिविधियों को भी पर्याप्त समय देना चाहिए।
1: जी, बहुत अच्छी आपने बात कही। प्रिया जी, अभी तक हमने सोशल मीडिया से होने वाले जो भी नकारात्मक प्रभाव है उसके बारे में जाना, और आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई बच्चे अगर खेलेंगे नहीं और ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन पे रहेंगे तो आंख और हेल्थ सब पे असर पड़ता है। साथ साथ एक और बात कहना चाहूंगी कि बच्चों की दोस्ती आजकल कम होने लगी है। जैसा कि हमारे जमाने में बहुत सारे दोस्त होते थे, हमारे पास टीवी भी नहीं था उस जमाने में, लेकिन एक बात और जानना चाहेंगे कि जब नकारात्मक प्रभाव की बात हुई तो सोशल मीडिया के क्या क्या लाभ मिल रहे हैं, यानी कि उसका सकारात्मक उपयोग क्या हो सकता है, इसके बारे में जानकारी आपने।
0: बहुत गतिविधियां नकारात्मक नहीं होती
1: जी,
0: उसके कुछ पॉजिटिव पहलू भी होते हैं। तो इससे होता क्या है कि उन्हें सीखने के नए अवसर मिलते हैं। ऑनलाइन कक्षाएं, शैक्षणिक वीडियो और विभिन्न कौशल सीखने के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। इससे सामाजिक जागरूकता बढ़ती है, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक मुद्दों के बारे में भी जागरूकता बढ़ती है, और साथ ही साथ बच्चों के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। अपनी उपलब्धियों और विचारों को साझा करने से आत्मविश्वास बढ़ भी सकता है। कैरियर और अवसरों की जानकारी, विभिन्न प्रतियोगिताओं, छात्रवृत्तियों और करियर संबंधी अवसरों की जानकारी भी उन्हें मिलती है। सोशल मीडिया एक शक्तिशाली, हम यह कह सकते हैं कि सोशल मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम है जो सही दिशा में उपयोग किए जाने पर शिक्षा, जागरूकता, रचनात्मकता और संचार को बढ़ावा देती है।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये बात सच है प्रिया जी कि किसी भी चीज के, यानी कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब ये हम पे निर्भर करता है कि हम उसे किस तरह से इस्तेमाल करें, अच्छे पहलू को देखें या उसके गलत पहलू को। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि सोशल मीडिया से जितनी तरह के खराब प्रभाव की बात हमने की, लेकिन उतने ही अच्छे फायदे भी है। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं आजकल जिसे हम घर में रह के पढ़ सकते हैं, और दूसरी बात है कि आप साथ साथ एक के साथ और भी कई चीजें आप कर सकती हैं। ये बहुत सकारात्मक विचार है, उपयोग है इसका, अगर बच्चे सही तरह से इस्तेमाल करें तो। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, पूछते हैं कि आपसे कि बच्चों का स्क्रीन टाइम

0: बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने में माता पिता की कैसी भूमिका होनी चाहिए, यानी कि अभिभावक होने के नाते आप अपनी राय बताइए बच्चों के साथ।
1: हाँ जी, स्क्रीन टाइम कम करने के लिए सबसे पहले माता पिता को इसके लिए एक सीमा तय करनी होगी।
0: जी।
1: बच्चों के मोबाइल और सोशल मीडिया उपयोग के लिए समय निर्धारित करना होगा और साथ ही साथ उनसे खुलकर संवाद करना होगा, बच्चों से सोशल मीडिया के लाभ और जोखिमों के बारे में भी,
0: दोनों के बारे में। और
1: जी, और स्वयं भी माता पिता को उदाहरण बनना पड़ेगा कि बच्चों के सामने उन्हें भी मोबाइल का संतुलित उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे अक्सर उनका अनुकरण करते हैं। और साथ ही साथ माता पिता को वैकल्पिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देना पड़ेगा, जैसे उन्हें बताना पड़ेगा खेल कूद का महत्व, पुस्तक पढ़ने का महत्व, संगीत, कला और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भी उन बच्चों की रुचि बढ़ाएं, और उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर भी उन्हें नजर रखना होगा। बच्चों द्वारा देखी जा रही सामग्री और उनके ऑनलाइन व्यवहार पर निगरानी रखनी होगी। साथ ही साथ पारिवारिक समय बढ़ाना होगा, परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने से बच्चों की सोशल मीडिया पर निर्भरता कम हो सकती है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही कि कहीं ना कहीं बच्चों से अगर हमारा संवाद बढ़ेगा तो बच्चे का रुझान उस तरफ से थोड़ा कम होगा। और भाई, जब बच्चे आजकल तो सोशल मीडिया का उपयोग करते ही हैं और करना भी है, लेकिन अभिभावक को चाहिए कि एक पैनी नजर बच्चों पे जरूर रखें। प्रिया जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, इस बात से वाकिफ हैं कि अभी के बच्चे खेलकूद, जैसा कि हमने पहले भी कहा, खेलकूद, बाहरी गतिविधियां, इन सब से दूरी बना लिए हैं बच्चे। तो इसके परिणाम जो है हम देख रहे हैं कि बच्चे घर में बैठे बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, आउटडोर गेम नहीं खेलते हैं। तो बच्चों के जीवन में खेलकूद का क्या महत्व है, इसके बारे में हमारे श्रोता सखियों को आप बताइए।
1: जी, खेलकूद बच्चों और साथ ही साथ युवाओं को सोशल मीडिया की अत्यधिक लत से दूर रखने का एक प्रभावशाली माध्यम है।
0: जी।
1: जब बच्चे खेल के मैदान में समय बिताते हैं तो उनका ध्यान मोबाइल और सोशल मीडिया से हटकर शारीरिक गतिविधियों पर केंद्रित होता है। खेल कूद से शरीर स्वस्थ रहता है, ऊर्जा का सही उपयोग होता है और मानसिक तनाव भी कम होता है। साथ ही बच्चों को नए मित्र बनाने, टीम के साथ काम करने और वास्तविक जीवन के अनुभव प्राप्त करने का अवसर भी मिलता है। इससे वे आभासी दुनिया के बजाय वास्तविक दुनिया से अधिक जुड़ते हैं। नियमित खेल कूद बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास और समय प्रबंधन की आदत विकसित करता है, जिससे वे सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और संतुलित रूप से कर पाते हैं। खेल कूद न केवल बच्चों को स्वस्थ और सक्रिय बनाता है, बल्कि उन्हें सोशल मीडिया से बहुत हद तक बचा कर भी रखता है।
0: बिल्कुल, और चूंकि बच्चों का ये जो उम्र होता है वो बढ़ने वाला उम्र होता है, तो खेल कूद से बहुत सारे बच्चों का शारीरिक विकास भी और मानसिक दोनों प्रभावित होता है। प्रिया जी, चलते चलते आप हमारी सखियों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि अभिभावक अपने बच्चों में या बच्चों के लिए बहुत चिंतित रहते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
1: अभिभावकों से और खासकर अपनी सखियों से ये कहना चाहूंगी कि प्रभाव बच्चों पर ना पड़ने दे, बच्चों को इनसे बहुत हद तक दूर रखने की का प्रयास करें और उन पर नजर हमेशा बनाए रखें। ज्यादा देर मोबाइल नहीं दे, मोबाइल दे भी तो पढ़ाई लिखाई के उपयोग के लिए ही दे।
0: बिल्कुल, अभिभावक के हाथ में बहुत ताकत होती है प्रिया जी। बच्चों कहते हैं कि माटी का गोला होते हैं, हम जिस तरह से आकार देंगे वैसे बनते हैं। तो बच्चों के लिए अभिभावक को चाहिए कि बचपन से ही उनकी इच्छा को, रुचि को पहचान कर तरह तरह की किताबें पढ़ने के लिए दें, तो निसंदेह बच्चे उसकी ओर आगे बढ़ जाएंगे। प्रिया जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। और हाँ, सच है कि आभासी दुनिया का उपयोग सीखने, पढ़ने,

0: जानकारी पाने के लिए करना सही है, लेकिन वास्तविक दुनिया के खेल, पढ़ाई, समय बिताना, परिवार के साथ बातें करना, घूमना, ये ज्यादा जरूरी है। प्रिया जी, आपने हमारे कार्यक्रम से जुड़कर हमारी सखियों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और अपना बहुमूल्य वक्त हमारे कार्यक्रम के लिए निकाला, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। नमस्कार।
1: बहनों, अभी आपने सुनी भेंटवार्ता, विषय था सोशल मीडिया के दौर में खोता जा रहा बचपन, और इस संदर्भ में जानकारी दे रही थी प्रिया गुप्ता, उनसे बातें कर रही थी शिल्पी। और शिल्पी भाई, जानकारियों के बाद तो बहनों को इंतजार रहता है मनोरंजन का, तो चलो एक इतना प्यारा सा, इतना सुंदर सा गीत सुनवाते हैं बहनों को कि वो बिल्कुल उस गीत में खो जाएं।

0: तो बहनों, चलते चलते आपसे इतना ही कहेंगे कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ज़्यादा स्क्रीन पर, मोबाइल पर समय ना बिताएं, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक है। सीमित समय मोबाइल और स्क्रीन पर देखें, आज ये
1: बिल्कुल,
0: बात।
1: क्योंकि बच्चों की तो खैर चाह रहती है, लेकिन हम अभिभावक होने के नाते यही कहेंगे कि बच्चों को जितनी दूरी हो सके इससे आप बना सकें तो बनाइए।
0: और अब वक्त हो गया है शिल्पी बहनों से विदा लेने का। तो चलते चलते बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की, और इसी के साथ अपनी सखी राखी,
1: और शिल्पी को दे इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म खेल खेल में का गीत शैलेंद्र सिंह की आवाज में। संगीत है आरडी बर्मन का है और इस गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने।

फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में आज बस इतना ही। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। एक बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार। समाचार आप क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमेरिका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa.

0: Williams. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. He added that the government is actively supporting self-help groups, which are going a long way in making women financially independent. The government has restricted institutional, industrial and commercial customers from buying motor spirit and high-speed diesel from retail outlets and asked them to source their requirements from their own consumer pump. The decision has been taken to prevent local shortages amid disruptions in global supply chains caused by the ongoing crisis in West Asia. In a notification, the Petroleum and Natural Gas Ministry said restrictions will be in place for up to 90 days. The retail outlets have been directed to sell up to 200 litres of high-speed diesel to a customer per day to prevent bulk purchase. Union Home Minister Amit Shah is chairing a high-level meeting to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Army Chief General Upendra Dwivedi, National Security Advisor Ajit Doval, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha, Directors General of CRPF, BSF, CISF, ITBP and the SSB are present in the meeting. The Amarnath Yatra will begin on the 3rd of July and conclude on the 28th of August. The Information and Broadcasting Ministry has released the Draft Telecommunication Rules 2026 pertaining to television, radio and related services for public consultation. The draft rules have been framed to consolidate the various guidelines issued for television and radio services under the previous Telegraph Act 1885 within the framework of the newly enacted Telecommunications Act 2023. The National Testing Agency, NTA, has extended the examination window by 15 minutes from 180 minutes to 195 minutes for re-NEET UG 2026, scheduled to be held on the 21st of this month. The new timings will be 2 p.m. to 5:15 p.m. The revised examination window includes the time required for mandatory examination formalities such as signing of attendance sheets and other invigilation procedures. In Pakistan-occupied Kashmir POK, 16 people were killed and 37 others wounded as Pakistani army opened fire from AK-47 rifles on thousands of unarmed protesters in Eidgah ground yesterday. Although the demonstration started peacefully demanding affordable flour, rice, electricity and basic rights, the scene soon turned violent with the Pakistani army unleashing gunfire on the crowd. Around 60 to 70,000 people had assembled in Rawalkot to raise slogans against Pakistan's continued occupation. General Antonio Guterres and Secretary General of the International Maritime Organization, IMO, Arsenio Dominguez, has condemned the attack on a Palau-flagged tanker off the coast of Oman in which three Indian seafarers have been killed. Spokesman for the UN Chief, Stefan Dujarric, said Mr. Guterres is deeply concerned by the continuing escalation. Renowned Indian shooting coach and former Asian Games gold medalist Jaspal Rana died at the age of 49 at a private hospital in New Delhi today. He mentored Manu Bhakar and helped her secure a historic double bronze medal at the 2024 Paris Olympics. President Draupadi Murmu expressed sadness over the passing of Jaspal Rana. Prime Minister Narendra Modi has also expressed grief at the passing away of Jaspal Rana. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.8% up in afternoon trade today. The Sensex advanced 653 points to 74,486, while the Nifty rose 160 points to 23,322 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: Akashwari Ranchi se prastut hai pradeshik samachar. नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला विकास को दी प्राथमिकता। स्वयं सहायता समूहों और तकनीक से नारी शक्ति बन रही आत्मनिर्भर। झारखंड हाईकोर्ट ने जेलों में आधी या एक तिहाई सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई के मामले में की सुनवाई। राज्य सरकार से मांगा लिखित जवाब। राज्य सरकार ने गरीब परिवारों का बकाया राशन एक मुश्त देने की प्रक्रिया की तेज। धोती साड़ी, नमक और दाल का बैकलॉग खत्म करने के लिए टेंडर प्रक्रिया तेज। स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में कई मसलों पर चर्चा। सरकार ने 7 दिनों के भीतर आधुनिक अस्पतालों के लिए मांगा विस्तृत प्रस्ताव। और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और भारतीय पिस्टल टीम के मुख्य कोच जसपाल राणा का 49 की आयु में दिल्ली में निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों की मदद से महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। उन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे आधुनिक क्षेत्रों में नारी शक्ति की बढ़ती भागीदारी पर प्रसन्नता जताई और उन्हें राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया।
2: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल।
3: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
2: महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों की तेजी से सुनवाई हो, दोषियों को तेजी से सजा हो।
3: 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर लाखों मुस्लिम बहनों का जीवन तबाह होने से बचाया है।
1: जामताड़ा जिले में किसानों, व्यवसायियों और समाज सेवियों सहित हर वर्ग के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को बेमिसाल बताया है। प्रगतिशील किसान अभय कुमार सिंह सहित हर वर्ग के लोगों ने केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं।
4: किसानों के लिए उन्होंने जो काम किए बहुत ही सराहनीय है। हर एक किसान को साल में 6,003 किस्त में देकर उन्नत कृषि करने का एक बहुत सुनहरा मौका दिया और आज किसान पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपया में अपने समय पर बीज खाद खरीदकर खेतों में जो अपना काम कर रहे हैं, उन्नत बीज उन्नत खाद के माध्यम से कम जगह में अच्छे से अधिक फसल उपजाने का काम आज किसान कर रहे हैं, जिसमें किसान काफी खुशहाल है।
1: झारखंड उच्च न्यायालय ने जेलों में आधी या एक तिहाई सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को याचिकाकर्ता के सुझावों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस याचिका में करीब 1,000 कैदियों की रिहाई के लिए लिखित सुझाव दिए गए हैं। अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। राज्य सरकार ने 68 लाख से अधिक गरीब परिवारों का बकाया राशन और कल्याणकारी सामग्रियां एक मुश्त देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर विभाग ने धोती साड़ी, नमक और दाल योजना का बैकलॉग खत्म करने के लिए टेंडर शुरू कर दिया है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जल्द ही सभी पात्र परिवारों को बकाया सामग्री मिल जाएगी। राज्य में स्वास्थ्य ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें एचएलएल हेल्थकेयर ने अस्पताल निर्माण और उपकरण खरीद पर प्रस्तुति दी। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने एचएलएल को 7 दिनों में विस्तृत प्रस्ताव सौंपने का निर्देश दिया। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को ट्रॉमा सेंटरों के रूप में विकसित करने और कम क्षमता वाले अस्पतालों को पीपीपी मॉडल पर चलाने की संभावनाएं तलाशने को कहा। रांची विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस विंग ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान और मजबूत की है। चालू सत्र में इस विंग की रैंकिंग और प्रतिष्ठा में बड़ा सुधार हुआ है। लगभग 10,200 से अधिक स्वयंसेवकों के साथ यह विंग झारखंड के सबसे सक्रिय छात्र संगठनों में से एक बनकर उभरा है। यह विंग राज्य में वृक्षारोपण, रक्तदान, सड़क सुरक्षा, स्वच्छता, डिजिटल साक्षरता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक अभियानों में लगातार अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी।

0: तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंत्रियों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष पर लगाए आरोपों से साफ है कि महागठबंधन बिखर चुका है। राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महज 16 विधायक होने के बावजूद कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा है, जबकि 24 विधायकों वाली भाजपा निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का समर्थन कर रही है। उन्होंने कांग्रेस को अपने विधायकों को एकजुट रखने की सलाह दी।
1: इस तरह से कांग्रेस जो है उछल कूद कर रही है, इससे प्रतीत हो रहा है कि हमारे समर्थित प्रत्याशी नाथवानी जी पिछले बार के अधिक वोट जीत करके राज्यसभा में जाए। कांग्रेस का इस तरह से विधानसभा के अंदर छाती पीट रहा है, इससे पता चलता है कि कांग्रेस टूट के कगार पर है। मंत्री एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई है।
0: देवघर पुलिस ने जसीडीह स्टेशन के पास से 6 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर अंतर्राज्यीय ब्राउन शुगर नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इनके पास से 76 ग्राम मादक पदार्थ और नकद बरामद किए गए हैं। एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि आरोपी रेल मार्ग से नशा लाकर देवघर में सप्लाई करते थे।
2: सूचना के आधार पे हमारी टीम वहाँ पे रेड करने गई, तो उस टीम ने नजर रखा और फिर देखा कि 2 लोग ट्रेन से आए और वहाँ ब्राउन शुगर डिलीवर करने के लिए आए थे। उनके बदले 63,000 रुपए ये लोग नगद देने वाले थे और इनको ट्रांजैक्शन करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और 76.19 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामद की हुई है।
0: घरेलू शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक लगभग 1% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक बढ़कर 23,382 पर पहुंच गया। इधर राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,36,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,42,000 रुपए प्रति किलो है। भारत के दिग्गज पिस्टल निशानेबाज और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव ने उनके निधन की पुष्टि की है। म्यूनिक विश्व कप से लौटने के बाद बीमार होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हार्ट सर्जरी भी हुई थी। वे भारतीय पिस्टल टीम के मुख्य प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। उनके निधन से खेल जगत में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक जताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि निशानेबाजी में असाधारण उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित करने वाले राणा का जाना खेल जगत की अपूर्णीय क्षति है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें बेहद मिलनसार बताते हुए देश में निशानेबाजी को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान को सराहा। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला विकास को दी प्राथमिकता, स्वयं सहायता समूहों और तकनीक से नारी शक्ति बन रही आत्मनिर्भर। झारखंड हाई कोर्ट ने जेलों में आधी या एक तिहाई सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई के मामले में की सुनवाई। राज्य सरकार से मांगा लिखित जवाब। राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को बकाया राशन एक मुश्त देने की प्रक्रिया की तेज। धोती साड़ी, नमक और दाल का बैकलॉग खत्म करने के लिए टेंडर प्रक्रिया तेज। स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में कई मसलों पर चर्चा। सरकार ने 7 दिनों के भीतर आधुनिक अस्पतालों के लिए मांगा विस्तृत प्रस्ताव। और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और भारतीय पिस्टल टीम के मुख्य कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी का। इसमें आज आप सुनेंगे ठुमरी और दादरा। कलाकार हैं सिप्रा बोस।

अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी, जिसमें आज आपने सुना ठुमरी और दादरा, कलाकार थी सिप्रा बोस। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आइए सुनते हैं सुगम संगीत। रुदारे मोहब्बत क्या कहिए, कुछ याद रहे कुछ भूल गए। आशा भोसले की आवाज में ये गजल सुनते हैं, लिखा है सागर सिद्दीकी ने।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार के लिए, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है। सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर

0: व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक खाद प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, एससीओ का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24 लाख रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करे। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कैनेडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कैनेडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे फौजी भाइयों के लिए समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: नारे भारतीय सेना।
1: आइए जय भारती कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं स्वदेश फिल्म का गीत एआर रहमान की आवाज में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत एआर रहमान का ही है।

आप सुन रहे हैं जय भारती कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से। और आइए अब सुनते हैं रवि शेरगिल की आवाज में जब तक है जान फिल्म का गीत। ए आर रहमान का संगीत है और इस गीत को लिखा है गुलजार ने।

0: अभी आप सुन रहे थे जय भारती कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। नया समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। एजेंसी ने कहा कि NTA यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट UG की परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित हो। एक रिपोर्ट।
3: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। NTA ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करे। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार धारकों के लिए पहुंच और सुविधा में सुधार करने के लिए झारखंड भर में आधार सेवा के बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत कर रहा है। आधार नामांकन और अद्यतन सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए UIDAI ने नागरिकों से केवल अधिकृत केंद्रों से ही सेवाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से रांची स्थित लोक भवन में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मुलाकात कर पंचायतों को आवंटित अनुदान राशि से योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी ज्ञापन सौंपा। शिष्टमंडल ने पंचायत स्तर पर विकास कार्यों के सुचारू और समयबद्ध संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश शीघ्र जारी कराने की मांग की। आज भारत आदिवासी पार्टी के एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से रांची स्थित लोक भवन में मुलाकात कर जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा सारंडा क्षेत्र के पात्र निवासियों को वनाधिकार पट्टा प्रदान करने की दिशा में पहल करने का अनुरोध भी किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ACB के विशेष न्यायाधीश ओमकार नाथ चौधरी की अदालत ने खूंटी अंचल के कर्मचारी सत्यनारायण राम को 500 रुपए रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराया है। वर्ष 2006 के इस मामले में अदालत ने उन्हें 1 वर्ष के कारावास और 15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जमशेदपुर में नशामुक्त भारत अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त राजीव रंजन ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगा। जिले के उपायुक्त राजीव रंजन ने कहा कि नशे की लत व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार की आर्थिक स्थिति और बच्चों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
4: राज्य में नशा मुक्ति अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत हम लोग चाहेंगे कि लोग नशा से अपने आप को मुक्त रखें। नशा परिवार के आर्थिक स्रोत को भी काफी क्षति पहुंचाता है और खास करके बच्चों की पढ़ाई लिखाई जिस घर में नशा होता है वहां पे प्रभावित हो जाता है। इसीलिए हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि अपने परिवार को नशा से मुक्त रखें, जिससे हम अपने देश को विकास के रास्ते पे ले जाएं।
1: और अब मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने झारखंड के पूर्वी हिस्सों में प्रवेश कर लिया है। मॉनसून की वर्तमान स्थिति, इसके आगे बढ़ने की संभावनाओं तथा राज्य में संभावित मौसम परिस्थितियों के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग रांची द्वारा आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का आज से आगाज हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस प्रतियोगिता का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। इस बार पहली बार 12 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
0: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओं, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है
2: जी।
0: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
0: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
0: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की
2: जी।
0: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है
2: जी।
0: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
0: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है
2: जी।
0: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया
2: जी।
0: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
0: श्रोताओं, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है
2: जी।
0: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
0: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
2: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
0: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
2: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
0: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओं, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
2: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
0: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
2: हिंदी की पाठ्यपुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है। और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
0: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
3: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
3: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
3: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
3: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
3: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
3: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
3: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
3: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
3: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
3: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
3: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
3: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
3: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

सुना आपने? कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी।

0: अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांवों की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

ये आकाशवाणी रांची है। आइए सुनते हैं केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर विशेष परिचर्चा। आज की परिचर्चा का विषय है युवा शक्ति। परिचर्चा में भाग ले रहे हैं श्रीमती ललिता कुमारी, राज्य निदेशक माई भारत, और श्री ज्ञान रंजन कुमार, संपादक रिपोर्टर पोस्ट रांची। परिचर्चा का संचालन कर रही है पूनम किरकिट्टा।

0: नमस्कार, मैं पूनम करकट्टा आप सभी का स्वागत करती हूं आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से आयोजित परिचर्चा में। आज की परिचर्चा आयोजित की गई है केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, और आज हमारी इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमती ललिता कुमारी, राज्य निदेशक माय भारत, और श्री ज्ञान रंजन कुमार, संपादक रिपोर्टर पोस्ट रांची। ललिता कुमारी जी और ज्ञान रंजन जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है
1: जी, बहुत
0: हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, केंद्र सरकार के एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, और इस दौरान केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए बहुत सराहनीय कार्य किए हैं, कई क्षेत्र में काम किए गए हैं, लेकिन युवाओं को भी ध्यान में रखकर, क्योंकि युवा ही किसी देश की नींव है, उस देश की पूंजी है, और इसे सरकार ने बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखते हुए कई सारी योजनाएं लाई हैं। इन योजनाओं की शुरुआत मैं करना चाहूंगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो युवाओं को कई फील्ड में ट्रेनिंग देता है, जिससे कि वो एक दक्ष नागरिक, दक्ष कार्यबल बन सकें और उद्योगों को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। ज्ञान रंजन जी, यह जो कौशल विकास योजना है, जिस तरीके से यह लाई गई और जिस तरीके से इसका योगदान रहा है देश को आगे बढ़ाने में, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी।
1: पूनम जी, अगर आप देखेंगे तो कौशल विकास योजना की शुरुआत 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी
0: जी,
1: उसके बाद से शुरू की गई, और केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत, आप अगर शुरुआती बजट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस बजट में एलोकेशन जो राशि का हुआ था वो अन्य की तुलना में, जो पहले होता था कि ठीक है युवाओं के लिए या फिर महिलाओं के लिए, एससी एसटी के लिए, जो भी करते थे सरकारें सभी करती थी काम, लेकिन इसमें फोकस किया गया युवाओं को। इसके पीछे की मुख्य मंशा प्रधानमंत्री की या एनडीए सरकार की ये रही थी कि जो विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है भारत, हमारा देश 65% आबादी युवा है, यानी 80 से 85 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो युवाओं का है। जाहिर है कि जिस देश में 145 करोड़ की आबादी में 80 से 85 करोड़ युवा होंगे, और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो जॉब का एज होता है 18 से लेकर 35 साल का, वो तकरीबन 46% है, यानी वो भी आपके 60 करोड़ के करीबन आते हैं। तो आप अगर पूरे आंकड़े को देखते हैं तो उसके लिए ये आवश्यक था कि ऐसे हुनरमंद को तैयार किया जाए जो आश्रित नहीं हो कि सरकारी नौकरी मिले या कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी मिले तभी हमारी जीविका

0: चल सकती है
1: जी।
0: अब प्रधानमंत्री की सोच ये थी कि जो हमारे देश के युवा हैं, जो हमारी युवा शक्ति है, और खास करके जो माइंड सेटअप होता है लोगों का, 18 से 35 साल के बीच के लोगों के बीच में जो कार्य दक्षता या कार्य क्षमता जो उसकी होती है, काम के प्रति जो जुझारूपन होता है, उसको कैसे डेवलप किया जाए, उसको कैसे देश हित में लाया जाए, इसको ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की थी। मुझे याद है कि राजीव प्रताप रूढ़ी जी को पहली मर्तबा कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था 2014 की जब सरकार बनी थी, तो और उनसे मेरी उस समय बात हुई थी, झारखंड दौरे पर आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये देश के लिए माइलस्टोन होगा। तो मैंने सवाल भी किया था कि साहब आप योजना शुरू किए हैं लेकिन कैसे माइलस्टोन होगा, क्योंकि कौशल विकास के लिए कम से कम 1 से 2 साल का तो आप ट्रेनिंग दीजिएगा, तो 2 साल के ट्रेनिंग के बाद फिर तत्काल काम कैसे आएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग एक पक्ष को देखते हैं, दूसरे पक्ष को नहीं देख रहे हैं। हमारी सरकार ने सिर्फ कौशल विकास को ही आगे नहीं बढ़ाया कि युवाओं को हम ट्रेंड करके उनको हुनरमंद बना करके देश हित में उसका उपयोग करें, हमारी सरकार ने एक मुद्रा योजना लाया है जिसके तहत कि अगर वो हुनरमंद हो जाते हैं तो उस मुद्रा योजना के माध्यम से जो एक गारंटर की बैंक डिमांड होती थी कि हमको गारंटर दो तभी हम लोन देंगे, तो अब इसमें नहीं है। तो आप सोचिए कि 50,000 से लेकर के 1,00,000 तक का लोन दिया जाता है अगर बच्चे हुनरमंद होते हैं कौशल विकास के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात यह है कौशल विकास सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गया, कौशल विकास कार्यक्रम जो है सो छोटे शहरों में ग्रामीण इलाके तक में पहुंच गया है,
1: बल्कि छोटे शहरों में ज्यादा सफलतापूर्वक बच्चे इस पर काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, पहले आपको याद होगा कि मोबाइल को बनवाने के लिए आपको खोजना पड़ता था कि दुकान कहाँ है जिसमें जाके मोबाइल बनाए, और अभी इससे फायदा ये हुआ है कि आप छोटा सा चीज, क्योंकि मोबाइल, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि अभी के समय में रिक्शा चलाने वाले से लेकर के दैनिक मजदूरी करने वाले से लेकर के प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर आईएएस सबके पास यूज होता है सबसे ज्यादा मोबाइल का। तो अगर हुनरमंद हो जाएगा हमारा देश तो जो 80 करोड़ 85 करोड़ लोड होता है, क्योंकि वो लोड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो वो भटकेंगे, तो भटकाव को रोकने में ये कौशल विकास योजना जो है, कौशल विकास कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री का है या भारत सरकार का है, उसकी मैं काफी सराहना करता हूँ इस मायने में कि देश हुनरमंद होगा तो देश विकसित होगा, देश विकसित होगा जो मिशन 2047 का है विश्व गुरु बनाने का या फिर सबसे विकसित कंट्री बनाने का। क्योंकि आप आर्थिक मोर्चे पर आप देख लीजिए, कोविड आया उसके बाद अभी खाड़ी देशों का युद्ध चल रहा है, इस दरमियान भी आप देखिए कई देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हाशिए पर आके खड़ी हो गई है, कई गुना ज्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी, ठीक है कुछ कठिनाई हुई है लोगों को, लेकिन उसके बाद भी हमारा देश अगर स्टेबल है तो इसको आप मान सकते हैं कि एक उच्च सोच, अच्छी नीति, अच्छे जुझारूपन से काम हो रहे हैं।
1: जी जी, ललिता कुमारी जी, इसी तरह स्किल डेवलपमेंट में एक और स्कीम आई है पीएम दक्ष योजना। पीएम दक्ष योजना, इसमें मुख्यतः एससी ओबीसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए ये योजना लाई गई है। तो इस योजना को लाने के पीछे क्या ध्येय रहा होगा केंद्र सरकार का कि हम स्पेसिफिकली इन वर्गों के बच्चों के लिए योजना लेकर आए?
2: पूनम जी, जैसा कि आपने बताया कि ये पीएम दक्ष योजना लाया गया है बेसिकली एससी एसटी वीकर सेक्शंस के यूथ जो हैं उनके लिए। तो जो हमारा भारतवर्ष रहा है पहले से कृषि प्रधान देश रहा है, और जो 70% पहले का जो डाटा था, आंकड़ा था, उसके हिसाब से 70% जो 70% लोग हैं वो कृषि पे इन्वॉल्व होते थे और उनके बच्चे जो हैं वही कृषि और मजदूरी के कामों पर पहले लगते थे। लेकिन अब जब से ये हमारा एनडीए सरकार आया है 2014 से, तब से सबको हम कैसे आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे कदम बढ़ा सके, जो सारी चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास वर्क फोर्स है, हमारे पास, हमारा देश को युवा देश कहा जाता है जहां पे 65% युवा हैं और ये हमारे देश के लिए एक डिविडेंट है, जहां ओल्ड एज के जनसंख्या ज्यादा हो जाती है तो वो लायबिलिटीज कहा जाता है। तो चूंकि हमारे पास युवा 65% है तो उनको हम कैसे ये दक्ष स्किल उनका इंप्रूव कर सके, उनको अलग से प्रशिक्षण वगैरह दे सके, और ताकि वो चीजों को जो हम बाहर से भारतवर्ष में देश में जो बाहर से आयात होके इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी चीजें बाहर से आती है तो वो अगर हमारे यहाँ के युवा दक्ष होते हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है, तो वो सारी

0: चीजें यही भारतवर्ष में ही वो बनेंगी, और यहाँ बनेगी तो वो एक रोजगार सभी बच्चों को मिलेगा, जो
1: जी
0: बेरोजगारी का समस्या है हमारे देश में, तो वो समस्या का समाधान होगा, और हमारे देश का जो आर्थिक स्थिति है, जो हमारा रेवेन्यू बाहर चला जाता है, वो हमारे देश में ही रहेगा, और हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है विकसित भारत @2047, तब तक हम अगर हम सभी चीज अपने देश में ही बनाने लगते हैं युवाओं को प्रशिक्षित करके, तो हम सही रूप में सही मायने में हमारा देश 2047 जब हम 100वीं जयंती मनाएंगे अपनी स्वतंत्रता की, तब तक हमारा देश एक
1: जी
0: विकसित भारत के पंक्ति में खड़ा होगा,
1: जी
0: विकसित देश में आ जाएगा,
1: जी जी
0: और ये बच्चों के लिए रोजगार है और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी
1: जी
0: उससे।
1: जी और सरकार का यही ध्येय रहा कि खासकर के इन वर्गों से, SC OBC EWS वर्गों से बच्चे
0: जी
1: पीछे न छूट जाएं,
0: जी
1: इसलिए इनके लिए खास।
2: देखिए, इसमें
1: हाँ
2: एक चीज और देखना होगा
1: जी जी ज्ञान रंजन जी,
2: कि आप जब बात करते हैं कि आजादी के बाद से हमेशा ये चीजें सामने आती है कि भाई SC है, ST है, OBC है, तो अब उसमें क्या होता था कि एक डिमांड होता था कि भाई जो
1: जी
2: सामान्य वर्ग में जो गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, उसके लिए सरकार क्या सोचती है। तो EWS योजना आई, लेकिन जो ये PM दक्ष योजना जो है,
1: जी
2: इसके अगर पहलू में आप जाएंगे तो प्री मैट्रिक से लेकर के आगे के एजुकेशन तक जो है सो इनको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है।
1: जी
2: इसके बाद जो है सो सरकार की तरफ से कैसे प्रोत्साहित करके रोजगार उन्मुखी ट्रेनिंग दी जा रही है
1: जी
2: इन बच्चों को
1: जी
2: कि वो अपना रोजगार खुद कर सके। मैंने बताया ना पूनम जी कि आज स्थिति ऐसी नहीं है कि देश में पूरे स्टेट को और सेंट्रल फोर्स को मिला लें, आप जो सरकारी कर्मचारी हैं वो मिला लें, तो उतने को अगर फिर से नौकरी दे दे सरकार, फिर भी बेरोजगारी का भार रहेगा।
1: जी
2: और इसको लेकर के कौशल विकास के साथ साथ जो PM दक्ष योजना को, आप एक एक योजना को देखेंगे ना, तो उसमें ये दिखता है कि एक माइंडसेट दिखता है गवर्नमेंट का कि भाई हम कैसे मेन पावर, जो हमारा सबसे मुख्य एज का मेन पावर है, क्योंकि वह वर्ग के बीच में जो कार्यक्रम इस तरह के लाए जाते हैं वो सही मायने में अगर आप देखेंगे, मैंने कहा रोजगार कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे सकती है, जो डिमांड होता है सरकारी नौकरी एक फिक्स है, आप उससे बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन कैसे हम क्रिएट करें। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि IIT करके बच्चे आते हैं और तरबूज की खेती झारखंड में रांची के ही बगल में कर रहे हैं। वो ऐसा किए हैं कि जो पहले कहा जाता था कि तरबूज बालू पर होता है, वो यहाँ की पहाड़ी मिट्टी पर उगा रहे हैं। परवल की खेती कहा जाता था बालू पर होता है, गंगा किनारे कोसी किनारे होता है, अब उसको हम देख रहे हैं रांची में वही ब्रीड, जो पटना का ब्रीड आता है व्हाइट कलर का परवल, वो हमको रांची में उपजाते हुए देख रहे हैं। आप फ्रेंच बीन को जो है सो वैश्विक स्तर पर हमारे झारखंड के बच्चों ने ही पहुंचाया है, यहाँ के युवाओं ने पहुंचाया है,
1: स्तर पर पहुंचाया,
2: आम को पहुंचाया। अभी
1: रामगढ़
2: आम का
1: से,
2: देख लीजिए
1: रामगढ़
2: कि
1: से
2: पहले जो है सो दीघा का मालदा और भागलपुर का जरदालू की चर्चा होती, जो प्रधानमंत्री जी ने भी की भी थी, लेकिन अब आम्रपाली जो हमारे यहाँ का है वो
1: यहाँ
2: लंदन गया हुआ है।
1: जी
2: तो ये जब युवा शक्ति जुड़ता है तो आपको नए तकनीक मिलते हैं। एक पौधे को डेवलप किया है जिसमें 5-6 तरह के आम होते हैं इसी BHU में,
1: ग्राफ्टिंग करके
2: तो अब हम ये कह रहे हैं ना कि जब दक्षता आएगी तो नेचुरली है कि उसका यूज देश हित में होगा।
1: जी
2: हमारी क्रय शक्ति जो पहले थी वो कैसे डेवलप हो रही है, क्योंकि क्रय शक्ति बढ़ेगी तो देश में जो सामान तैयार होंगे उसको खरीदने वाले लोग बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एड ऑन होगा, और
1: जी
2: ये करना बहुत जरूरी है,
1: जी
2: क्योंकि सिर्फ केंद्र सरकार के पैसे, राज्य सरकार के पैसे हमें मिला नहीं मिला, नौकरी दी नहीं दी, ये कह के अगर चाहेंगे ये संभव नहीं।
1: जी मैं
0: और
1: आपसे
0: इसमें ये मैं एक चीज ऐड करना चाहेंगे ना, जैसे
1: जी
0: पहले थे कि स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग के लिए बच्चों को बाहर जाना है तो उनके पास अपना कैपेसिटी या पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे, अभी प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास केंद्र के अंतर्गत जो अब छोटे शहरों की बात हम पहले कर रहे थे, तो छोटे शहरों में भी आवासीय कौशल विकास केंद्र है जो ये सुविधा बच्चों को प्रदान कर रहा है कि अगर
1: जी
0: उनको 3 महीने 6 महीने घर से आना जाना ना करना हो, वहां पे रहना है तो रहने का, प्लस उनको कुछ अपना पॉकेट एक्सपेंसेस का भी वो स्टाइपेंड के तौर पे उनको दिया जा रहा है, तो ये भी बच्चों को उत्साहित कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है कि वो प्रशिक्षण को पूरा करें, और कंप्लीट करके वो अपने कुछ रोजगार सीकर ना बन के दूसरों को रोजगार दें, जो भी कुछ भी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वो अपना स्टार्टअप कुछ भी शुरू करें, जो प्रशिक्षण वो ले रहे हैं तो वो दूसरों को रोजगार देने के लायक बन रहे हैं।
1: जी जी, ललिता कुमारी जी आप राज्य निदेशक हैं, तो आप ये बताइए आपके केंद्र के माध्यम से युवा किस किस तरह की बेनिफिट ले सकते हैं?
0: हमारे कैटेगरिकली तीन तरह के कार्यक्रम होते हैं। एक तो उनका नेशनल प्लेटफॉर्म दिया जाता है जो यूथ हैं, अभी जो एज पर राष्ट्रीय युवा नीति, उनको जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में कैसे उनको इंगेज किया जा सके ताकि वो अपने आप को खुद को डेवलप कर सके और बाकी आगे अपने परिवार को समाज को विकसित कर सके। हमारा सेकेंड कैटेगरी का जो कार्यक्रम होता है माई भारत का है, वो वॉलंटियरिज्म को प्रमोट करना है ताकि हम सभी चीज़ों के लिए, जैसा कि सर पहले बतला रहे थे कि हम केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के को ही कोसते ना रहें, सभी चीज़ों के लिए हम उनके ऊपर निर्भर ना रहें, हम कुछ अपने लिए मतलब अपने आप को स्वयं सेवी संस्था के रूप में या स्वयं सेवक के रूप में कैसे स्थापित करके हम अपने खुद के विकास के लिए और अपने परिवार समाज के विकास के लिए कुछ कर सकें, और जहाँ पे समाज है परिवार से समाज बनता है और समाज से देश बनता है तो उनका खुद का विकास होगा तो हमारा देश भी विकसित भारत के कैटेगरी में 2047 तक डेफिनेटली आ जाएगा। हमारा लाइफस्टाइल चेंज होते जा रहा है, पहले बच्चों को ओपन फील्ड मिलता था खेलने के लिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने के लिए, तो वो फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस भी अभी युवाओं का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, तो उसके लिए भी उनके फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन माई भारत के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा है कि उनको कम्युनिटी सर्विस में जो वॉलंटियरिंग सर्विस हम जो बोले उसी का एक और पार्ट है कि वो कम्युनिटी सर्विस में उनको कैसे इंगेज किया जा सके, और बाकी दूसरे के बारे, हमारा देश इतना बड़ा है कि इसको बहुत पहले से विभिन्नताओं में एकता का देश कहा जाता है, तो बहुत तरह के ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम्स माई भारत के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। अभी जैसे करंट का एग्जाम्पल है, हमारे यहाँ से झारखंड से 15 बच्चे और इसी तरह हर एक स्टेट से 15 और हर एक यूनियन टेरिटरी से 10 बच्चे, ये हमारा जो बॉर्डर एरिया का विलेज है वहाँ पे विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। करीबन टोटल उनका जो कार्यक्रम का ड्यूरेशन होगा वो 16-17 दिन होगा, 7 दिन उनको एक्सट्रीम एंड जो हमारा पाकिस्तान से लगता हुआ हमारा इंडिया का बॉर्डर है, हिमाचल उत्तराखंड लेह लद्दाख, वहाँ पे ITBB के सहयोग से माई भारत उन गाँवों का चयन किया गया है, और हमारा कार्यालय तो हर एक जिला में होता है, तो हमारा माई भारत के जिला कार्यालय ITBP और युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से ये मौका बच्चों को दिया जा रहा है ताकि अपने देश के बारे में भी समझें कि केवल जो सेना होते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस वही केवल हमारे देश की रक्षा नहीं करते बॉर्डर पे, अगर वहाँ पे वो गांव नहीं होता तो हो सकता था कि हमारा जो एरिया है जो जमीन है हमारा उस पे दूसरे लोग कब्जा कर सके, तो चूंकि वहाँ पे अब पॉपुलेशन है इतने कठिन परिस्थिति में भी वहाँ पे जनसंख्या जो आवास कर रही है लोग रह रहे हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं एक रोल है कि वो हमारे देश को बॉर्डर एरिया पे गार्ड कर रहे हैं।
1: जी जी, और ये बहुत जरूरी है कि बच्चों में कम उम्र से देशभक्ति और सामाजिक हित की भावना लाई जाए, और इसके लिए ये सब योजनाएं बड़ी अच्छी हैं। अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी ज्ञान रंजन जी, बाकी सारी योजनाओं में एक योजना बड़ी चर्चा में रही है, स्टार्टअप इंडिया।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: स्टार्टअप इंडिया जो पहले हमारे पे या हमारी सरकारों पर आरोप लगते थे कि इनोवेशन को एक जो गाइड करने के लिए स्कीम्स लाई जाए जो मांग उठती रहती थी, ये स्टार्टअप इंडिया उसको मीट कर पा रही है, मैं आपसे जानना चाहूंगी।
2: देखिए 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई और इसके पीछे मंशा ये थी कि कैसे जो है सो हम अपने युवाओं को कैरियर बेस्ड, उसका करियर बनाने के लिए किस तरह से रोजगार बेस्ड वो अपना करियर बनाए, इसको लेकर के ट्रेंड करना था, इसके लिए कई तरह के काम होते थे। लेकिन इसके बाद आप इसमें अगर देखेंगे तो आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोनॉमी हो चुका है, यानी कि भारत जो है सो वो स्टार्टअप के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ चुका है कि हम किसी भी विश्व के किसी भी देश में ऐसा नहीं होगा जहां कि भारत के बच्चे जाके स्टार्टअप का काम शुरू नहीं कर रहे हैं, भारत की तो छोड़ दीजिए। तो ये 16 में शुरू होकर के आज 26 हम लोग 10 साल के अंतराल में इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसका लाभ तो मिल रहा है। मैंने पहले भी बताया आपको सरकारी नौकरी संभव नहीं है जब तक इस तरह से नहीं किए जाएंगे, जब तक नए नए चीजों को, नई नई तकनीक को नहीं लाया जाएगा, उनको स्टार्टअप से नहीं जोड़ा जाएगा,
1: उनको
2: प्रमोट नहीं किया
1: जी,
2: जाएगा, तब तक जो है सो ये संभव नहीं है कि आप चाहिएगा कि जो मैम कह रही हैं कि विकसित भारत 2047 की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री जी ने की है, कल ही नीति आयोग की बैठक थी, उसमें भी

0: उन्होंने इन चीजों का चर्चा किया। उससे पहले कैबिनेट के मिनिस्टर्स के साथ उन्होंने जो उनका सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में हुआ उसको लेकर के जब बैठक हुई, फिर नीति आयोग की बैठक होती है, तो आप नीति आयोग की बैठक में देखेंगे पूनम जी, तो जो मूल पॉइंट था वो फोकस था युवाओं को
1: जी,
0: हम कैसे युवा शक्ति को किन किन माध्यमों से आगे बढ़ाएं। तो अगर युवाओं के बीच में ये भावना भरी जा रही हो कि कौन सबसे ज्यादा हुनरमंद बन सकता है और उसको प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार गार्जियन के तौर पर उसके पीछे खड़ी हो जाती है, तो जाहिर है कि वो आगे बढ़ेंगे। अब सिंपल सा उदाहरण मैं देता हूं कि पहले आपको याद होगा जब हम और आप पढ़ते थे तो उस समय बैंक से एजुकेशन लोन लेने के लिए हम लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी और उसमें ये था कोई सरकारी नौकरी करने वाला गारंटर होगा तभी आपको लोन मिलेगा
1: जी, ये और, तो बात थी।
0: और अब स्थिति ये है पिछले 10 साल से कोई गारंटर नहीं। विद्या लक्ष्मी योजना के माध्यम से हायर एडुकेशन के लिए चाहे वो आप देश के अंदर पढ़िए या विदेश पढ़ने के लिए जाइए और बैंक खुद आपके पास आकर के लोन देने के लिए तैयार होता है, आपको सिर्फ कुछ पेपर सबमिट करने पड़ते हैं, वो भी एडुकेशनल पेपर जो आप 12th कहाँ से किए, 10th कहाँ से किए, फादर का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये बता करके आप जो है सो शिक्षा ऋण लेते हैं। शिक्षा ऋण मिलने के बाद फायदा क्या हुआ है कि जो कभी बेंगलोर और पुणे हब हुआ करता था हायर एडुकेशन का देश में, आज वो सिमट करके भुवनेश्वर चला आया है। आप रांची से, सिर्फ मैं रांची की बात करता हूँ, रांची से हजारों बच्चे जो है हायर एडुकेशन के लिए बगल के प्रदेश उड़ीसा में जाकर के भुवनेश्वर में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और इसके पीछे वजह क्या है कि वो पहले निकल नहीं पाते थे, ऐसा नहीं था कि शिक्षा के केंद्र नहीं थे या फिर उसको वहां पर जाने वाले हमारे बच्चे हुनरमंद नहीं थे या वो क्वालिफाइड नहीं थे, कारण होता था आर्थिक कारण। उस आर्थिक कारण को जब एक तरह से क्लियर कर दिया जाए, आर्थिक कारण को सुधार दिया जाए, तो जाहिर है कि वो आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के बाद फायदा क्या होगा, अब जैसे आप भी याद कीजिए कि हम लोग के टाइम में होता था ग्रेजुएशन करने वाले वो तो क्या है, तो ग्रेजुएट कर गया मेरा बेटा
1: जी।
0: और आज क्या हो रहा है, इंजीनियर, इतने इंजीनियर हमारे पास हैं कि अगर उस इंजीनियर को के लिए अगर ये स्टार्टअप योजना नहीं आए तो शायद बेरोजगारों की सबसे बड़ी फौज इंजीनियरों की हो जाएगी देश के भीतर में
1: जी।
0: तो ये प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की जो सोच है कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो इससे आगे क्या होने वाला है, उसके लिए पहले से जो रास्ता तैयार कर दिया जाता है, ये हमारे देश के युवाओं के लिए एक ज्यादा फायदेमंद चीज हो रहा है और उसका लाभ भी युवाओं को मिल रहा है
1: जी। जी, और स्टार्टअप इंडिया की तरह ही एक और योजना लेकर आई गई है SC ST कम्युनिटीज के लिए, खास करके स्टैंडअप इंडिया, और स्टैंडअप इंडिया से बहुत सारे लोगों ने उसका फायदा उठाया है। और इसकी खासियत है कि बैंक लोन आपके एंटरप्राइज के लिए मिल जाएंगे 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की।
0: जो पारंपरिक हुनर जो लोगों के बीच में थी, उस हुनर को कैसे बाजार देना है, इस बाजार देने के लिए जो है सो सरकार ने इस तरह की योजना को लाया कि इसके तहत जो SC ST कम्युनिटी के लोग जो है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैठ करके अपने हुनर को ऊपर तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो उसको उसके घर तक काम करने के लिए वहां तक पहुंच गया कि भाई तुम करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं
1: जी।
0: हम तुमको दे रहे हैं, तुमको रोड के किनारे बैठ करके नहीं वो काम करना, तुम अपने घर में तैयार करो, वहां पर एक बढ़िया सा ऑफिस बना करके। अब जाके देखिए पूनम जी, ग्रामीण झारखंड का मैं बताता हूं, कई जगहों पर है कि उसके अगर ऑफिस को आप गांव के ऑफिस को देख लेंगे तो शहर के कई ऑफिस आपको फीके दिखाई देंगे उसके सामने में, इस योजना के तहत जो काम शुरू हुआ है।
1: जी जी, उनको इसका लाभ इसलिए भी मिल रहा है कि उनके पास जगह की कमी नहीं है।
0: हाँ बिल्कुल, जो प्रॉब्लम होता है शहरी क्षेत्रों में, शहर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि लैंड को लेकर के
1: जी, जी।
0: एक सामान्य नागरिक, सामान्य बच्चे जो पढ़ लिख करके बेरोजगार बैठे थे, उसको बोला जा रहा है कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट बनो, तो ये फायदा तो मिल रहा है लोगों को। और अब मैं बताया कि जहां जहां आप देखिए झारखंड में, जैसे चाईबासा सरायकेला का एरिया लीजिए, वहां पर कुकुन की खेती होती थी, जो रेशम जिससे बनता है
1: कुकुन।
0: अब वहां पर क्या है कि पहले जो धागा तैयार करते थे उनको मिलता था डेली वेजेस वाला पैसा
1: जी,
0: कि 300 रुपये जो न्यूनतम मजदूरी है उसके हिसाब से न्यूनतम मजदूरी दे करके। अब उनको कहा जाता है नहीं, आप थोक में धागा तैयार करो, क्या लगेगा कॉस्टिंग, आपको बैंक तैयार है देने के लिए। तो ये जो थोड़ी थोड़ी मतलब चेंजिंग जो लाई गई है इन चीजों में, उसका फायदा सीधे तौर पर उस पेशा से जुड़े हुए लोगों को मिल रहा है। तो उसको इतना ईज कर दिया गया है लोगों के बीच में, और उसके पीछे ये सारी योजनाएं हैं
1: जो उत्पादन जो हो रहा है,
0: उत्पादन हो रहा है, बढ़ रहा है उसका
1: जी। और ये सारी योजनाएं तभी कारगर सिद्ध होंगी जब हमारे बच्चे पढ़ लिख सकेंगे और उनको पढ़ने की सुविधाएं दी जाएंगी। और इसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना लाई गई, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं लेकिन इकोनॉमिकली वीकर हैं उनके लिए। तो ललिता कुमारी जी, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी कि ये जो एजुकेशन का पर्सपेक्टिव है वो किसी देश के लिए कितना मायने रखता है।
2: पूनम जी, जैसा कि आपने कहा, एजुकेशन ये बेसिक पिलर जो हम कहें तो डेवलपमेंट के लिए ये है। और जब बच्चे एजुकेटेड हो जाते हैं तो उनको जो नॉलेज कैपेसिटी होता है, सोचने समझने का उनका जो शक्ति होता है, अपने भविष्य को वो कहाँ पे देखते हैं, कैसे वो अपने भविष्य को इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छे स्तर पर ले जा सकते हैं। तो अगर बच्चे जहाँ पर एजुकेटेड हैं लोग, जैसे केरला था हमारा पहले, बहुत पहले की, वहाँ 100% लिटरेसी है, तो वहां का जो विकास का स्तर था वो बाकी राज्यों से काफी ऊंचा था। तो एजुकेशन कहीं ना कहीं है जो हमारे विकास को और हमारे समाज के विकास को बहुत हद तक प्रभावित करता है। और अगर ये एजुकेशन जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है जैसा कि आपने कहा, और अभी तो जो SC ST की बात बार बार आ रही है और वीकर सेक्शन की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, तो उनके लिए भी अभी जो स्टाइपन का जो सर ने भी पहले बताया, इस तरह की सारी सुविधाएं हैं। तो बच्चे जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो भी काफी तक हायर एजुकेशन ले रहे हैं और काफी उच्च स्तर पे वो अपना नौकरी भी कहीं कहीं पे हासिल कर रहे हैं। हमारे सरकारी क्षेत्र में तो नौकरी बहुत लिमिटेड है, लेकिन अभी प्राइवेट कंपनियां जो इतना हो गई है, वहां भी लोग अगर अच्छे एजुकेटेड हैं, वो उनका केवल एजुकेशन नहीं, वो स्किल्ड है, तो वो काफी ऊपर पोस्ट तक जा सकते हैं। तो एजुकेशन बहुत हद तक हमारे बच्चों को सोचने समझने का शक्ति और के विकास को, और अगर वो विकसित हुए तो हमारा देश अल्टीमेटली विकसित होगा, तो ये प्रभावित करता है एजुकेशन बच्चों को।
0: पूनम जी, एक थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना चाह रहा था कि अभी 2011 का जो जनगणना था उसके हिसाब से 1000 पुरुष पर 947 की तकरीबन महिलाएं थी। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी हमारे देश में जो रेशियो है वो 1000 पुरुष पर 1013 या 15 महिलाएं हैं। और ये इस बात को बताता है कि किस तरह से एजुकेशन के कारण से हर क्षेत्र में, आप इसको छोटा चीज ना समझा जाए इस चीज को, कि एक समय था कि बेटियां बोझ हुआ करती थी, लेकिन ये सारी योजनाएं जो आई हैं, बेटियां बोझ नहीं होगी, बेटियां हुनरमंद होकर के अब बेटों से आगे निकल रही हैं
1: और अब वो सहारा बन रही,
0: अब सहारा बन रही है, अपने पेरेंट्स का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का सहारा बन रही है। अब किसी भी संस्थान में जाइए आप, जाकर के देख लीजिए रिजल्ट, अगर आप देखेंगे तो बच्चों से, लड़कों से अच्छा बेहतर रिजल्ट जो है सो लड़कियों का आता हुआ दिख रहा है। अभी 10th का 12th का निकला CBSE का भी,
1: पिछले कुछ वर्षों से
0: आप देख लीजिए। तो ये हुआ कैसे, ये एजुकेशन का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे सोसाइटी पर है। जॉब तो सेकेंडरी चीज है, पहले बेटियों को 10th हो गया, 12th हो गया, शादी कर दो, लेकिन अब उसके माता पिता चाहते हैं, अब तो मैं कितने पेरेंट्स को जानता हूँ जिसके पास सिर्फ एक बेटी है, वो दूसरा बच्चा भी नहीं कर रहे, एक बेटी को लेकर के वो खुश है। तो ये सोसाइटी में चेंजिंग एजुकेशन के माध्यम से हुआ है। और उस चेंजिंग पर जो है सो अगर सरकार की योजनाएं उसको लाभान्वित करती हैं, तो लक्ष्मी लाडली योजना जो शुरू की गई थी, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो शुरू की गई, ये भी युवा से जुड़ा हुआ ही मामला है
1: जी।
0: तो इन सारी योजनाओं का भी लाभ हर क्षेत्र में, आप देखिए पूरे कैलकुलेशन को अगर आप देखेंगे ना, मैंने कहा 12 योजनाएं 12 वर्ष में जो मुझे याद आ रहा था, ऐसी योजनाएं हैं जो कि एक इतना मजबूत पिलर देश के युवाओं के लिए खड़ी कर देगा, जो 2047 का जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री का, देश को विकसित भारत बनाने का
1: जी।
0: इन युवाओं के माध्यम से बनाने का, और उसके लिए जो योजनाएं चल रही है वो योजनाएं अगर सही मायने में जिस तरह से अब तक इम्प्लीमेंटेशन दिखाई दे रहा है उसका वो होता रहा, तो तय मान के चलिए कि जो लक्ष्य है वो लक्ष्य 47 तक पहुंचने से पहले भी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और हम यही कामना करते हैं।
2: हम इसमें एक चीज और ऐड करना चाहेंगे, केवल एजुकेशन के क्षेत्र में नहीं, बहुत सारे जगहों में जैसे माय भारत भी अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल का कॉम्पिटिशन आयोजित करते हैं। हम लोग 2025 और 26 में भी विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न तरह के जो करेंट टॉपिक्स है दिए जाते हैं। वो 2025 का भी एग्जाम्पल है, झारखंड में फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो तीन कैंडिडेट होते हैं वो नेशनल लेवल पे जाते हैं, तीनों लड़कियां ही थी। और 2026 में भी अभी वो लोग कल निकलेंगी दिल्ली के लिए, वो एक चतरा से हैं, एक प्रथम जो स्थान हासिल की है, द्वितीय स्थान हासिल की है वो रांची से हैं, और तृतीय स्थान रामगढ़ से। कल वो लोग जो हमारा नेशनल लेवल यूथ पार्लियामेंट होगा उसमें भाग लेने के लिए दिल्ली जा रही है, और 25 में भी और 26 में भी तीनों बच्चियां ही थी।
1: जी,
2: तो
1: जी,
2: ये कहीं ना कहीं ये हमारे ये वुमेन एम्पावरमेंट में भी काफी रोल अदा करता है, जो अगर हमारा एजुकेशन डेवलप हो।
1: जी जी, और बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन हमने कुछ चुनिंदा योजनाओं पर ही बात की, क्योंकि ये सब योजनाएं बहुत गहराई से युवाओं को पॉजिटिव तरीके से अफेक्ट करती हैं। और इसके साथ ही आज की परिचर्चा हम समाप्त करना चाहेंगे। जैसा कि आप सुन रहे थे, आज की परिचर्चा में हमारे साथ शामिल थे श्रीमती ललिता कुमारी, राज्य निदेशक माय भारत, और श्री ज्ञान रंजन कुमार, संपादक रिपोर्टर पोस्ट रांची। ज्ञान रंजन जी, ललिता कुमारी जी, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत सारी बातें साझा की, बहुत सारी बातों पर प्रकाश डाला, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर विशेष परिचर्चा। आज की परिचर्चा का विषय था युवा शक्ति। परिचर्चा में भाग ले रहे थे श्रीमती ललिता कुमारी, राज्य निदेशक माय भारत, और श्री ज्ञान रंजन कुमार, संपादक रिपोर्टर पोस्ट रांची। परिचर्चा का संचालन कर रही थी पूनम केरकेट्टा।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। नया समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। एजेंसी ने कहा कि एनटीए यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी की परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित हो। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार धारकों के लिए पहुंच और सुविधा में सुधार करने के लिए झारखंड भर में आधार सेवा के बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत कर रहा है। आधार नामांकन और अद्यतन सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए UIDAI ने नागरिकों से केवल अधिकृत केंद्रों से ही सेवाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है। गोड्डा पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 28 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। नगर थाना प्रभारी दिनेश कुमार महली ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर चपरासी टोला में छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान राहुल कुमार शाह और विपिन सोनी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सरायकेला खरसावां जिले ने सरायकेला खरसावां जिला पुलिस ने भीषण गर्मी में ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की सुविधा के लिए बैटरी संचालित कूलिंग जैकेट उपलब्ध कराने की पहल शुरू की है। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने प्रथम चरण में 6 ट्रैफिक जवानों को विशेष जैकेट प्रदान किए। SP ने बताया कि एक बार चार्ज होने पर यह जैकेट करीब 6 घंटे तक ठंडक प्रदान करती है और आगे सभी ट्रैफिक जवानों को यह सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज दक्षिण पश्चिम मानसून ने झारखंड के पूर्वी हिस्सों में प्रवेश कर लिया है। मानसून की वर्तमान स्थिति, इसके आगे बढ़ने की संभावनाओं तथा राज्य में संभावित मौसम परिस्थितियों के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग रांची द्वारा आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं उर्दू कार्यक्रम प्रस्तुति प्रशांत गौरव की।

0: यही है आपने राजदा, खून का कोई मजहब नहीं होता, कोई रंग भेद नहीं होता। जब किसी अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच झूलते किसी इंसान को खून की जरूरत होती है, तब किसी अजनबी का किया हुआ रक्तदान उसके लिए किसी फरिश्ते के तोहफे जैसा होता है।
1: बिल्कुल शगुफ्ता, रक्तदान को महादान यूं ही नहीं कहा गया है। हमारे समाज में आज भी रक्तदान को लेकर कुछ गलत फहमियाँ हैं कि इससे कमजोरी आती है, जबकि डॉक्टर्स का मानना है कि सेहतमंद इंसान अगर रेगुलर तौर पर रक्तदान करे तो उनकी सेहत अच्छी बनी रहती है और वो कई जिंदगियां बचा सकती है।
0: तो दोस्तों, इस 14 जून को आप भी ये संकल्प लें, ये अहद करें कि रक्तदान करेंगे और किसी डूबती हुई जिंदगी का सहारा बनेंगे।
1: और आजकल तो कई जरिया है शगुफ्ता लोगों को अवेयर करने का। जरा सोचिए, हमारी रगों में बह रहा खून कल किसी की रगों में दौड़कर उसे एक नई जिंदगी दे तो कैसा रहेगा। दुर्घटना में घायल इंसान, थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे या किसी गंभीर बीमारी से लड़ते इंसान के लिए हमारा एक यूनिट खून अमृत जैसा है। रक्तदान करने से हमारा शरीर कमजोर नहीं होता बल्कि और भी हेल्दी हो जाता है। तो फिर देर किस बात की, आज ही आगे आएं, रक्तदान करें और मानवता का फर्ज निभाएं।
0: हाँ राजदा, और एक यूनिट ब्लड डोनेट करने से आप एक नहीं बल्कि तीन तीन जिंदगियां बचा सकते हैं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स के शक्ल में। हर हेल्दी पर्सन जिसकी उम्र 18 से 65 साल की है, हर 3 महीने में सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है और कई जिंदगियां बचा सकता है।
1: और रक्तदान के बहुत सारे फायदे भी होते हैं शगुफ्ता, नया खून बनता है।
0: क्या बात है।
1: रक्तदान करने से शरीर में नए ब्लड सेल्स का निर्माण तेजी से होता है, दिल की सेहत या शरीर में आयरन की मात्रा को संतुलित रखता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। फ्री हेल्थ चेकअप, रक्तदान से पहले हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर और कई जरूरी जांचें हैं जो मुफ्त में की जाती है। तो रक्तदान से बिल्कुल भी ना घबराएं, एक हेल्दी इंसान रक्तदान कर सकता है। थोड़ी देर के लिए थोड़ी सुस्ती जरूर होती है लेकिन आप वापस बस थोड़ी देर में फिट हो जाएंगे और फिर रोजाना जैसे अपना काम करते हैं वैसे ही करने लगेंगे।
0: इतने सारे फायदे हैं रक्तदान के, तो क्यों ना हम रक्तदान की तरफ खुद भी जाएं और लोगों को भी जागरूक करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो कहूंगी कि अगर हमारी खून का एक कतरा अगर किसी की जिंदगी बचा सकता है तो इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है।
0: राजदा, हमारे पास और भी अच्छे टॉपिक्स हैं लेकिन उससे पहले हम सामीन को सुनवाते हैं मकाला, शायरी झारखंड में कुदरत और तहजीब की अक्कासी। मकाला निगार है सदफ कायनात।
2: जंगलों की छाव, नदियों का नगमा, पहाड़ों की शान। जंगलों की छाव, नदियों का नगमा, पहाड़ों की शान। कुदरत ने जैसे सजा रखा हो अपना गुलिस्तान। झारखंड उर्दू जबान व अदब के अहम मराकज में शुमार किया जाता है। अगरचे झारखंड बतौर अलहदा रियासत 2000 को वजूद में आया, अलबत्ता झारखंड में उर्दू अदब की तारीख काफ़ी कदीम है। यहाँ उर्दू शायरी की बुनियाद बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। यहाँ के मुख्तलिफ इलाके खुसूसन रांची, हजारीबाग, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह में उर्दू शायरी को तवानाई और फलने फूलने का मौका मिला। बिलाशुबा झारखंड अपने आप में दिलकशी और मकनातीसी कुव्वत समोए हुए है जिसकी खूबसूरती, सकाफत, रक्स और मौसीकी और त्यौहार को उर्दू शोरा ने अपने कलाम का मौजू बनाया है। यहाँ के अहम शोरा की फहरिस्त में सिद्दीक मुजीबी, प्रकाश फिक्री, वहाब दानिश, अख्तर सईदी, परवेज रहमानी, अनवर इरज वगैरह शामिल हैं, जिन्होंने यहाँ की अदबी फिजा को इस कदर मुअत्तर किया कि उर्दू अदब के सफाए करतास पे शोराए उर्दू को ताउम्र के लिए रोशन कर दिया। प्रकाश फिक्री उर्दू शोरा की फहरिस्त में एक अहम नाम तस्लीम किए जाते हैं जो उर्दू शायरी में आलमी सतह पर मशहूर भी हुए। इनके पैदाइश के मुतालिक जाबिर हुसैन सफर सितारा में 2 अगस्त 1931 और हसन निजामी ने झारखंड के जदीद गजल गो शोरा में 1929 दर्ज किया है। प्रकाश फिक्री का असल नाम जहीरुल हक और कलमी नाम प्रकाश फिक्री था। झारखंड की उर्दू शायरी में हमें सबसे ज्यादा फितरत की अक्कासी और फितरी शायरी प्रकाश फिक्री के यहाँ देखने को मिलती है। उनकी पैदाइश 1931 को अम्बाला और वफात 1908 ईस्वी को रांची में हुई। उनका असल नाम जहीरुल हक और कलमी नाम प्रकाश फिक्री था। इनके मायानाज तसानीफ में सफर सितारा और एक जरा सी बारिश है। इनका शुमार जदीद शायरी के नुमाइंदा शोरा में किया जाता है। वो जदीदियत के मुनफरिद और सेहतमंद मजाज रखते हैं। प्रकाश फिक्री बुनियादी तौर पर गजल के शायर थे। उन्होंने पूरी खुलूस और ईमानदारी के साथ अपने शायरी का हक अदा किया। शबनम भीगी घास पे चलना कितना अच्छा लगता है, शबनम भीगी घास पे चलना कितना अच्छा लगता है, पांव तले जो मोती बिखरे झिलमिल रास्ता लगता है, शबनम भीगी घास पे चलना कितना अच्छा लगता है, पांव तले जो मोती बिखरे झिलमिल रास्ता लगता है, जाड़े की इस धूप ने देखो कैसा जादू फेर दिया, जाड़े की इस धूप ने देखो कैसा जादू फेर दिया, बेहद शब्द दरख्तों का भी रंग सुनहरा लगता है, भेड़ी उजली झाग के जैसी सब्जा एक समंदर सा, भेड़ी उजली झाग के जैसी सब्जा एक समंदर सा, दूर खड़ा वो पर्वत नीला ख्वाब में खोया लगता है, जिसने सबकी मैल सकाफत धोई अपने हाथों से, जिसने सबकी मैल सकाफत धोई अपने हाथों से, दरिया कितना उजला है वो शीशे जैसा लगता है। प्रकाश फिक्री के चंद अशार आप पेशे खिदमत है, जिसमें दरख्त और नदी के खूबसूरत मंजर को प्रकाश फिक्री ने खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। चांदी जैसी झिलमिल मछली, चांदी जैसी झिलमिल मछली पानी पिघले नीलम सा, चांदी जैसी झिलमिल मछली पानी पिघले नीलम सा, शाखें जिस पर झुकी हुई है दरिया बहता सरगम सा। इसी मौजू से मुताबिक सिद्दीक मुजीबी के यहाँ हमें बेहतरीन अशार देखने को मिलते हैं। सिद्दीक मुजीबी की पैदाइश 7 जुलाई 1931 और वफात 2014 को रांची के डोरंडा में हुई। उनका ताल्लुक गद्दी कबीले से था। इनके वालिद का नाम मोहम्मद मुजीब गद्दी और दादा का नाम अजमतुल्लाह गद्दी था। इनके दोस्तों में अख्तर पयामी, कलाम हैदरी, अनवर अजीम, शकीलुल रहमान, यूसुफ इमाम, वहीदुल हसन वगैरह शुमार किए जाते हैं। सिद्दीक मुजीबी को मुताले का बड़ा शौक था। उन्होंने कदीम और जदीद अदब का मुताला किया। रिसाला सफकून जो जदीदियत का बेहतरीन और नामवर पर्चा शुमार किया जाता था, इसमें उनकी गजलें शाई हुआ करती थी। इनकी वाबस्तगी रांची यूनिवर्सिटी के शोबाए उर्दू से भी रही। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उर्दू की बका के लिए वक्फ कर दी। सिद्दीक मुजीबी को रांची से काफी मोहब्बत थी। इनके अहम शेरी तसानीफ में शजर ममनुआ और पुलसरात से आगे है। जंगलों की छाओ में बसती है एक दुनिया नई, जंगलों की छाओ में बसती है एक दुनिया नई, मांडर की लय पे नाचती है जिंदगी झारखंड की, सरहुल की खुशबू से महकता है हर एक चमन, सरहुल की खुशबू से महकता है हर एक चमन, रंगों से भर गया है ये मौसम झारखंड का, जाने किस सहरा की जानिब उड़ गया है आबी परिंद, जाने किस सहरा की जानिब उड़ गया है आबी परिंद, जिसमें खून का समंदर सर पटक कर रह गया। एक शायरा अपने कलाम में झारखंड का जिक्र करते हुए फरमाती है, मुलाहिजा करें, हम है छोटा नागपुरी हमको इस पे नाज है, हम है छोटा नागपुरी हमको इस पे नाज है, इस निराली सरजमी का और ही अंदाज है, हमें छोटा नागपुरी हमको इस पे नाज है, इस निराली सरजमी का और ही अंदाज है, सनते हक की है ये सारी जमीन एक शाहकार, सनते हक की है ये सारी जमीन एक शाहकार, जर्रा जर्रा है यहाँ का दिल फरेबो पुर बहार, दौलतो सरवत में भी मुमताज है ये अर्जो पाक, लाखों रहबर सूरमा मत पून है यहाँ जेरो खाक, वो छलती कूदती बलखाने वाली नदियाँ, वो छलती कूदती बलखाने वाली नदियाँ, शंख कोयल सौन रेखा बह रही है जो यहाँ, खूबसूरत घाटियों का वो निराला सिलसिला, खूबसूरत घाटियों का वो निराला सिलसिला, जो बुलंदी में ये लगता है उफक से मिल गया, जिस तरफ देखो पहाड़ों के हुजूम बरगुबार, जिस तरफ देखो पहाड़ों के हुजूम वो बरगुबार, जिसके ऊपर रक्स करती और गुनगुनाती है बहार। اسپر جمیل جھارکھنڈ کے نمائندہ مشہور شعرا میں شمار کیے جاتے ہیں. ان کے کلام میں ہمیں دل برداشتگی، تنہائی، محرومی اور قرب جا بجا نظر آتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے رومانی اور فطری شاعری بھی کی، جس کی بہترین مثال ان کی ایک نظم جھارکھنڈ ہے. ہر آدمی کو تجھ سے محبت ہے جھارکھنڈ، ہر آدمی کو تجھ سے محبت ہے جھارکھنڈ، تو تو خدا کی دی ہوئی جنت ہے جھارکھنڈ. جو تیرے پاس ہے وہ خزانہ کہیں نہیں، جو تیرے پاس ہے

0: खुशियाँ हर सू, सरहुल की मस्ती, सोहराई की खुशियाँ हर सू, इस धरती की तहजीब है मोहब्बत का जुनू, मांडर की लय, करम की गीत और सरहुल की बहार, यही तो है मेरी धरती, यही तो है झारखंड का प्यार। शुक्रिया।
1: तो दोस्तों अभी अभी आप सुन रहे थे मकाला शायरी है झारखंड में कुदरत और तहजीब की अक्कासी। मकाला निगार थी सदफ कायनात। और इसी के साथ ही शगुफ्ता अब बात करते हैं एक ऐसे शख्सियत की जिनका नाम है गोप बंधु दास, जो कि एक शायर, अदीब और मुजाहिदे आजादी थे। सामईन, इतिहास के झरोखे से अगर हम उन अजीम शख्सियत को याद ना करें जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, तो हमारा अपना ये सफर अधूरा रहेगा। जून का ये महीना एक ऐसे ही महान स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यकार से जुड़ा है।
2: गोप बंधु दास जी सिर्फ एक राजनेता या सामाजिक कार्यकर्ता नहीं थे, वे एक बेमिसाल शायर, अदीब और मुजाहिदे आजादी थे। उड़ीसा के लोक जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका काफी अतुलनीय योगदान रहा है। उन्होंने अपने लेखनी को आजादी का हथियार बनाया। गरीबों और बाढ़ पीड़ितों की खिदमत में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर दी। उनकी एक मशहूर कविता की पंक्ति आज भी रोंगटे खड़े कर देती है, जिसका भाव है, मेरा यह शरीर इस देश की मिट्टी में मिल जाए और देशवासी मेरे शरीर पर चलकर आजादी की राह पर आगे बढ़ेंगे। ऐसे महान और अदीब देशभक्त को आकाशवाणी के परिवार और हम तमाम सामेईन की ओर से शत शत नमन।
1: बहुत अच्छा लगता है शगुफ्ता जब हम ऐसे किसी शख्सियत के बारे में बातचीत करते हैं जिनसे हमें कुछ प्रेरणा मिलती है, हम इंस्पायर होते हैं। और हमारे इस प्रोग्राम का खासियत भी यही होता है शगुफ्ता कि हम हर बार ऐसे शख्सियत को याद करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जहनी सुकून और योग की।
2: राजदा, सही कहा आपने, जहनी सुकून और योग। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में हमारे पास सबके लिए वक्त है, ऑफिस के लिए है, सोशल मीडिया के लिए है, दोस्तों के लिए है, लेकिन अगर किसी के लिए वक्त नहीं है तो वो है खुद के लिए। सुबह उठते ही सिरदर्द, दिन भर की थकान और रात को तनाव, क्या आपकी जिंदगी, रास्ता, क्या आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी भी ऐसी ही हो गई है? अगर हाँ तो क्यों?
1: बिल्कुल शगुफ्ता, आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी सेहत के लिए बिल्कुल भी सोचते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। और अक्सर लोग यही सोचते हैं कि योग का मतलब सिर्फ शरीर को तोड़ना, मरोड़ना या कठिन आसन करना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। योग शब्द संस्कृत से यूज से बना है, जिसका सीधा मतलब है जुड़ना, अपने शरीर का अपने मन और आत्मा से जुड़ जाना ही योग है। जब हम सुबह खुली हवा में बैठकर गहरी सांस लेते हैं तो वो प्राणायाम है। जब आप अपने भटकते हुए मन को एक जगह टिकाते हैं तो वो ध्यान है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये विज्ञान मुफ्त में दिया है ताकि हम बीमार ना पड़े।
2: तो सामीन, एक्सरसाइज यानी कि योग किसी एक उम्र के लिए नहीं है, चाहे स्कूल जाता बच्चा हो, दफ्तर जाता युवा हो या घर के बुजुर्ग, योग तो सबके लिए है। आज की तारीख में जहां डायबिटिक, ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन जैसी बीमारियां घर घर में पैर पसार रही हैं, वहां योग ही एक ढाल की तरह काम करता है। तो अपने रोजमर्रा में सिर्फ 15 से 20 मिनट ही अगर एक्सरसाइज करें तो हमारे तनाव छूमंतर हो जाएंगे और हमारे जिस्म में भी इम्यूनिटी यानी के रोगों से लड़ने की ताकत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात राजदा कि आपके चेहरे पर भी चमक आएगी और कोई महंगी क्रीम भी नहीं लगानी पड़ेगी।
1: बिल्कुल, ये बात तो सही है शगुफ्ता, जब हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है ना तो हमारे चेहरे पर चमक खुद ब खुद आ जाती है। तो फिर इंतजार किस बात का दोस्तों, आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ही क्यों, चलिए आज से और अभी से ये संकल्प लें कि हम हर दिन योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, खुद भी हेल्दी रहेंगे और अपने परिवार को भी हेल्दी रखेंगे। योग को अपनाएं, बीमारियों को दूर भगाएं। और वैसे भी कहते हैं ना कि योग करें, निरोग रहें, जीवन को खुशहाल करें, आज से ही अपनी सेहत का नया आगाज करें।
2: क्या बात है। और इसी आगाज के साथ मैं ये कहूंगी कि कुछ अगर नगमे का भी आप लुत्फ दे दें तो मजा आ जाएगा।
1: बिल्कुल, ये तो हमारे प्रोग्राम की खासियत है कि हम म्यूजिक के बिना तो रह नहीं सकते और हमें पता है कि हमारे जो दोस्त हमें सुन रहे हैं उन्हें भी म्यूजिक का इंतजार होता है। तो चलिए शगुफ्ता, देर नहीं करते हैं और अपने दोस्तों को सुनाते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची का प्रसारण। और आपको अब बताते चलें आज रात तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे सांझ सरगम के अंतर्गत फिल्म संगीत। मुख्य समाचार 5 बजे 5:02 पर आप सुनेंगे युवाणी। चर्चा का विषय होगा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और बचपन बचाएं बच्चों से प्यार करें। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। 5:30 पर आप सुनेंगे हमारा औद्योगिक प्रसारण श्रमिक लोग। चर्चा का विषय कलम और स्कूल ना कि मजदूरी की धूल। प्रस्तुति प्रशांत गौरव की। 6 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार। 6:02 पर कार्यक्रम होगा खेती बारी। चर्चा का विषय खेतों का नियमित भ्रमण करें। प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की।

6:32 पर आप सुनेंगे हमारी दुनिया। चर्चा का विषय होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। एक नागपुरी वार्ता है।

राष्ट्र की उन्नति युवाओं की चुनौती। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर राम कुमार और प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। 7 बजे प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं। 7:11 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल। 7:15 पर आदिवासी अखड़ा आप सुनेंगे हो भाषा में। चर्चा का विषय, जीवन में स्वच्छता अपनाएं, स्वस्थ रहें और आयुष्मान योजना पर। प्रस्तुतकर्ता होंगे प्रदीप कुमार। सात बजकर 45 पर प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सहिया। 8 बजे फिल्म संगीत। 8:10 पर विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। 8:45 पर समाचार संध्या। 9 बजे न्यूज एट नाइट। 9:15 पर उर्दू में समाचार। 9:30 पर करेंट अफेयर्स। रात्रि 10 बजे आप आकाशवाणी रांची से सुनेंगे सुनहरी यादें। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सितार पर राग रागेश्वरी। गायक कलाकार होंगे चिर सत्य ठाकुर। 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

श्रोताओं, दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम का समय खुद के साथ बिताने और सुकून के पल तलाशने का सबसे बेहतरीन मौका होता है। आप प्रकृति की गोद में एक कप चाय के साथ या अपनी पसंदीदा धुन सुनकर इन पलों को और भी खास और यादगार बना सकते हैं। स्वागत है आप सभी का सांझ सरगम में। कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूँ मीनाक्षी।

ये पहला गाना है साजन की बाहों में फिल्म से, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजें हैं, समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: एक बार फिर से स्वागत आप सभी श्रोताओं का सांझ सरगम में। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में। फिल्म है खुदगर्ज, संगीत राजेश रोशन का है, बोल है हिंदी वर्गीय।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में कसूर फिल्म का ये गाना था। नदीम श्रवण का संगीत और बोल थे समीर के। इसके साथ ही सांझ सरगम अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम से मीनाक्षी को दीजिए विदा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। नया समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। एजेंसी ने कहा कि NTA यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट UG की परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित हो। पलामू में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अवैध खनन के खिलाफ देर रात छापेमारी कर 3 ट्रेलर और 1 पोकलेन मशीन जब्त कराई। छतरपुर थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में की गई इस कार्रवाई में एक अंतर्राज्यीय खनन गिरोह के सक्रिय होने की जानकारी सामने आई है। मंत्री ने कहा कि अवैध खनन से राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह पुलिस ने मधुबन थाना क्षेत्र के दलांचल करई गांव में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में हत्या के पीछे पारिवारिक भूमि विवाद और जादू टोना को लेकर चल रहा विवाद मुख्य कारण पाया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि सभी आरोपी मृतक के गोतिया पक्ष के हैं और हत्या की साजिश में शामिल थे। पलामू जिले में सोशल मीडिया पर देशी कट्टा के साथ स्टेटस लगाना एक युवक को महंगा पड़ गया। हरिहरगंज थाना क्षेत्र के सरसोत गांव निवासी 19 वर्षीय अभय कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने उसके निशानदेही पर 2 देशी हथियार बरामद किए हैं और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरायकेला खरसावां जिले में पहली बार महिला खिलाड़ियों के लिए जिला स्तरीय फुटबॉल लीग का आयोजन किया जाएगा। जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने बताया कि 25वीं जिला फुटबॉल लीग 2026 का आयोजन 24 जून से 1 जुलाई तक खरसावां के अर्जुना स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से FM के 101.7 MHz पे। सांध्यकालीन सभा में आप सबों के साथ मैं हूँ राधा। नमस्कार। आज की इस सभा में, सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की आइए सबसे पहले संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं।

बाद आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गीतकार होंगे गुलयार।

इससे प्रेम सब है ना, आपको कुछ समझ में नहीं आता। पांच चालीस से जाएगा खेती गृहस्थी। कार्यक्रम खेती गृहस्थी में आज आप सुनेंगे चंद्र लोकगीत, और इस कार्यक्रम के साथ आज होंगे सुरेश चंद्र सोए। शाम के 6 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम के 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हो अखड़ा। इस कार्यक्रम में समानता का अधिकार पर चर्चा होगी। नंदू गोप एवं साथी से सुनेंगे गीत, साथ ही स्वरोजगार पर जानकारी देंगे। सीता सिंह को शाम 6:30 पर आप सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर चर्चा होगी इस कहानी में। साथ ही आप सुनेंगे बाह्य ध्वनि अंकन पर आधारित कार्यक्रम। शाम 6:55 पर आप हम चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे शाम के 7 बजे प्रादेशिक समाचार और ज़िले में आजकल। शाम के 7:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पर विशेष कार्यक्रम। शाम के 7:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि 8 बजे सुनेंगे फरमाइसी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। समाचार संध्या में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि के 8:45 पर। रात्रि 9:15 पर हम आपको पुनः शामिल करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में। गजलों का कार्यक्रम महफिल आप सुनेंगे रात्रि के 10 बजे, और फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग आप सुनेंगे रात्रि के 10:30 पर। रात्रि 11 बजे आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे, और सभा समापन की घोषणा हम करेंगे रात्रि के 11:10 पर। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.7 MHz पे। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही गीतकार के गीत। गीतकार हैं गुलजार।

पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म घर से। आवाज़ें हैं किशोर कुमार लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं श्रोताओं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गीतकार को। गीतकार हैं गुलियार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म घर का गीत किशोर कुमार लता मंगेशकर के स्वर में। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म लेकिन से, आवाज़ है सुरेश वाडेकर की।

0: 0-1-4-2-4-2.
1: और अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म मेरे अपने का ये खूबसूरत सा गीत। आप सुन रहे हैं आज एक ही गीतकार गुलजार को। इस गीत को संगीत से सजाया है सलील चौधरी ने।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म मौसम का गीत। इस गीत को संगीत से सजाया था मदन मोहन ने, और आप आज सुन रहे हैं एक ही गीतकार गुलजार के लिखे चंद फिल्मी नगमे। तो श्रोताओं, इसके साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम हम यहीं पे संपन्न करते हैं, लेकिन आपसे विदा लेने से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इसके साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम गुलदस्ता से राधा को अब दीजिए इजाजत। पुनः होगी मुलाकात अगले कार्यक्रमों में, तब तक के लिए नमस्कार।

कार्यक्रम खेती गृहस्थी सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुरेश चंद्र सोय का जोहार। श्रोता, हम आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल हैं। आज की चर्चा के माध्यम से श्रोताओं, हम जानकारी लेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता पर, क्योंकि केंद्र सरकार का बार बार कहना कि आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्य प्रणालियाँ हैं उसे हमें मजबूत करना होगा, और ग्राम सभाओं को भी और अधिकार देना होगा, और ग्राम सभाओं को भी अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। इसी संदर्भ में श्रोताओं, आज हम जानकारी लेंगे, मनोरंजन करेंगे उड़िया लोकगीत से, और भेंट वार्ता के माध्यम से हम जानकारी लेंगे एक स्वरोजगार युवक से। श्रोताओं, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, यदि वह देश ग्रामीण आबादी से भरी हुई है, जहां 70% आबादी का जीवन यापन ग्रामीण क्षेत्रों पर आश्रित है, तो ऐसे स्थिति में उस देश को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देना होगा। श्रोताओं, प्राचीन काल में हमारा देश सोने की चिड़िया कहा गया था, और देश विदेश से लोगों को आकर्षित किया था। आज चुनौतियां बहुत अधिक हैं, और 21वीं सदी में आज हम प्रवेश कर चुके हैं, जहां तकनीकी वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक, ऐसे चीज़ें आज हमारे सामने हैं। परंतु हमारी जवाबदेही नागरिक होने के नाते, हमारी जवाबदेही है कि हम अपने देश को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करें, और समतामूलक समाज को हम बनाएं। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो संसाधन है उसका सदुपयोग करने की जरूरत है। श्रोताओं, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि एवं कृषि से संबंधित बहुत सारे संसाधन है, क्योंकि वर्तमान समय में यदि हम औद्योगिकरण की हम बात करें, तो औद्योगिकरण करने के लिए खनिज संसाधनों की जरूरत होती है, परंतु यह संसाधन सीमित रहती है, और भविष्य में भी इन खनिज संसाधनों की जरूरत प्रत्येक देश को, प्रत्येक राज्य को होती है, अपने राज्य के और अपने देश के सर्वांगीण विकास के लिए। परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती है, बदलती रहती है। ऐसी स्थिति में यदि संसाधन यदि हमारे पास ना रहे, तो आने वाली सदियों में अर्थव्यवस्था और कमज़ोर होगी। इसके लिए हमें अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा, और आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना होगा। संभावनाएं बहुत अधिक है ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादनों से ही हम मनुष्यों को भोज्य पदार्थों की आपूर्ति होती है, और भोजन के बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती है। परंतु इन क्षेत्रों में पानी की असुविधा है, किसानों के लिए जो बाजार व्यवस्था होनी चाहिए उसकी कमियां हैं, फसलें हमेशा मानसून पर निर्भर रहती है, उसकी भरपाई करने की ज़रूरत है, जिसमें प्रयासरत है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जगह जगह चेक डैम बना के हो, या तालाब का निर्माण करके, या जलाशयों का निर्माण करके प्रयासरत हैं कि हम अपने देश को और अपने राज्य को एक आत्मनिर्भर बना सके। लेकिन इतनी से ही नहीं होगी, इसके लिए हमें ग्रामीणों को भी जागरूक होना होगा, और ऐसे क्षेत्रों में
जल से संबंधित या जल जमाव से संबंधित ऐसे योजनाओं का चयन करना चाहिए जिससे हम भविष्य में उसका उपयोग सामूहिक रूप से कर सकें। बड़ी बड़ी नदियां हमारे इस राज्य में नहीं हैं, परंतु जंगल हैं, पठार हैं। आज ज़रूरत इस बात की है ग्राम सभा के माध्यम से उन पठार या जंगल के तराई क्षेत्रों में जहां पड़ती है ऐसे ज़मीनों पर नाला का निर्माण कर उस वर्षा जल को संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ तालाबों का निर्माण हो, किसानों का उत्पादन सही रूप से उन्हें मिले, बाहर राज्यों में या विदेशों में एक्सपोर्ट कर पाए, इसके लिए उन फसलों को भी हमें उगाना होगा जिसकी कीमतें राज्य या अंतर्राज्य या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में इसकी मांग है। औषधीय पौधों के मामले में हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफ़ी जागरूक है, इस क्षेत्र में भी हम रोजगार का संसाधन या रोजगार का क्षेत्र को हम बना सकते हैं। कपास, लाह की खेती, इसके साथ साथ औषधीय पौधों की खेती, सहजन इत्यादि जो आज के समय में है उनकी व्यावसायिक स्तर पर खेती करने की ज़रूरत है, और जगह जगह ग्राम सभा के माध्यम से कोल्ड स्टोरेजों का निर्माण की ज़रूरत है और सामूहिक रूप से खेती करने की ज़रूरत है। जो परती ज़मीनें हैं, खाली पड़ी हुई हैं, ऐसे ज़मीनों का सदुपयोग करनी चाहिए। उन ज़मीनों पर इमारती लकड़ी या फलदार वृक्षों की खेती कर सकते हैं, क्योंकि फलदार वृक्ष हमें जीवन पर्यंत फल देते हैं और फलों की आज काफ़ी मांग है। श्रोताओं, यदि हम इस प्रकार की क्रियाकलापों को ग्राम सभा के माध्यम से करते हैं तो निश्चित ही हमारा राज्य, हमारा देश आत्मनिर्भर हो सकता है। श्रोताओं, आज के इस वैश्वीकरण के समय सारे लोगों को नौकरियां देना संभव नहीं है, इसके लिए स्वरोजगार ही एकमात्र उपाय है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार की असीम संभावनाएं हैं। हमें इस पर चिंतन मनन करना चाहिए भविष्य के मद्देनजर। श्रोताओं, इस जानकारी के बाद आइए मनोरंजन करते हैं इस लोकगीत से।

0: श्रोताओं, इस लोकगीत के बाद आइए हम भेंटवार्ता के माध्यम से हम जानकारी लेते हैं एक स्वरोजगार करने वाले युवक से।
1: सभी श्रोताओं को सुरेश चंद्र सोय का जोहार। श्रोता, आज हम एक युवा से बातचीत करेंगे स्वरोजगार के माध्यम से अपने बाल बच्चों को या अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कार्यरत हैं, तो उन्हीं से हम जानकारी लेते हैं कि स्वरोजगार किस प्रकार उसके परिवार को या अपने सगे संबंधियों को

0: रोजगार दिलाने का काम कर रहे हैं। आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है, जोहार। आपका शुभ नाम?
1: मानसिंह बिरोली।
0: अच्छा, मानसिंह बिरोली। अच्छा मानसिंह बिरोली जी, आप कई काम किए होंगे, दिख रहे हैं आप यहाँ सेंटरिंग काम कर रहे हैं
1: जी,
0: तो इस क्षेत्र में आप कैसे आए? पहले तो आप, हो सकता है, हमें लगता है कि आप खेतीबाड़ी करते
1: थे। पहले खेतीबाड़ी करते थे, उसके बाद खेतीबाड़ी करते करते नहीं हो पाया।
0: नहीं होने का कारण?
1: नहीं होने के कारण है कि हम लोग बारिश पे निर्भर करते हैं। बारिश अगर नहीं हुई तो धान नहीं होगी, और इस वजह से हम बाद में चेन्नई तरफ चले गए।
0: अच्छा, चेन्नई तरफ चले गए। लेकिन हमें तो लगता है कि सरकारें बहुत अच्छे काम कर रही है, केंद्र और राज्यों की भी, किसान क्रेडिट कार्ड हुआ या प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम या बहुत सारे योजनाएं हैं
1: जी,
0: क्या धरातल पर वो आप उसका लाभ नहीं ले पाए?
1: जी वो तो धरातल पर तो आता है, लेकिन धरातल में जो बैठे हुए हैं वो लोग सब खा जा रहे हैं।
0: अच्छा, किसानों से नहीं हो रहा है
1: जी, किसानों तक नहीं पहुंच रही है।
0: अच्छा, किसानों तक, क्योंकि कई किसान रांची का या बलरामपुर का यदि हम बात करते हैं, तो वहाँ का जो चाईवासा जैसे शहर है, वहाँ पर बाहर से आपका फसल आते हैं या साग सब्जी जो आते हैं, तो हम जो यहाँ चाईवासा में रहते हैं, वहाँ इस प्रकार की संभावना क्यों नहीं बन रही? क्यों बाजार में हमारे किसान अपने साग सब्जी को क्यों नहीं ला पा रहे, जबकि बाहर से सब्जी आ रही है, जमशेदपुर से या बारामूला से? ऐसा क्यों?
1: ऐसा क्यों कि यहाँ वही बोलेंगे कि सिंचाई का ही अभी अभाव है, लेकिन अभी फिलहाल जो सोलर पंप वगैरह लग रहा है, उससे मेरे ख्याल से अभी होगी, इस बार से शुरू होगी सर।
0: अच्छा, इस बार से हो सकता
1: है? हो सकती है।
0: और बाजार की जो क्या व्यवस्था है आज के समय में, दूसरी दुनिया को यदि हम देखते हैं तो एक्सपोर्ट करते हैं
1: जी,
0: है ना, चाहे केरल की ओर जाइए या मध्य प्रदेश को, सोयाबीन है जैसे चीजें हैं, या जम्मू कश्मीर की हम बात करें, वहाँ से एप्पल है, ठीक है, उस प्रकार के हमारे इस प्रदेश में भी, झारखंड में भी एप्पल आना, एप्पल तो यहाँ का प्रोडक्शन नहीं है
1: जी,
0: तो हमारे किसान अपने इस क्षेत्र का उत्पादन को बाहर राज्यों में क्यों नहीं भेज पा रहे हमारे किसान लोग?
1: उतना वृहद रूप से रोप भी नहीं रहे हैं और कर भी नहीं रहे हैं, अगर ऐसा कर पाते हैं तो फिर ये जो ट्रांसपोर्टिंग या तो जिस माध्यम से जाना चाहिए उस माध्यम से नहीं हो पाएगा तो फिर किसान ठगा जाएगा।
0: अच्छा,
1: अगर उस टाइप का अगर बन जाए कि आप रोपिए और हम ले जाएंगे, उस टाइप से होने से किसान को दूसरा जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप बीज दे रहे हैं, किसान खेती करेगा और वो इसी को बेचना है, उस टाइप से होने से अच्छा रहेगा।
0: अच्छा, अर्थात इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग?
1: जी जी जी,
0: कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग
1: जी,
0: क्योंकि आज के समय में जो जैविक खेती की जो बढ़ोतरी हुई है इस देश में काफ़ी तीव्र गति से, लेकिन यदि हम इस प्रकार की खेती करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो बड़े बड़े फार्म हाउस की जरूरत पड़ेगी
1: जी,
0: बड़े बड़े ग्रीन हाउस की जरूरत पड़ेगा, बड़े बड़े पॉली हाउस की जरूरत पड़ेगी, जहाँ हम बारहमासी मतलब उत्पादन कर सके। तो हमारे इस क्षेत्र में इस प्रकार की अभी संभावना नहीं है कि आपका जो प्रखंड स्तर में पॉली हाउस हो या ग्रीन हाउस हो, इस प्रकार की हमारे वैसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है स्तर पर?
1: नहीं, वृहद स्तर पर ये सब कुछ भी नहीं है सर।
0: अच्छा, क्योंकि जब हम अमेरिका की तुलना अपने देश से करते हैं, अपने राज्यों से करते हैं, संभावना तो यहाँ भी है
1: जी,
0: लेकिन अमेरिका जिस तरीके से अपने किसानों को सब्सिडी देती है और एक बड़े बड़े फार्म हाउस है, बड़े बड़े ग्रीन हाउस है, उसके अंदर बारहमासी खेती होता है, और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जैसे, मतलब वहाँ पर पूरा के पूरा नए तकनीकी के साथ, क्या ऐसा संभावना हो सकता है हमारे क्षेत्र में भी?
1: हाँ, हो सकता है, क्योंकि किसान जो है ना पूंजी लगा करके जो सिंचाई वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो उस हिसाब से वो पूंजी किसान के पास बहुत ज़्यादा वृहद रूप में पूंजी वगैरह की भी शॉर्टेज रहती है, तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से पूंजी भी उपलब्ध कराना होगा और बीज भी मेरे ख्याल से, और तब जाके यहाँ से कुछ प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है।
0: मतलब किसान इच्छा है, रखता है।
1: इच्छा, किसान इच्छा रखता है, क्योंकि किसान से जुड़ी हुई वो लोग के पास सब कुछ आइडिया है, लेकिन वो ये है कि पानी और पूंजी में ही अभाव मेरे ख्याल से लगता है।
0: अच्छा, यदि इसका सुविधा दे दिया जाए तो किसान एक आत्मनिर्भर हो सकता है।
1: जी जी जी।
0: अच्छा, तो आप जो चेन्नई गए थे या गुजरात गए थे, वो किस पर्पज से गए थे?
1: यहाँ पर खेती नहीं होने के कारण, और हम सोचे कि उधर जा करके हम अच्छा मुनाफा लेंगे ये मजदूर करके, लेकिन मजदूरी वगैरह में वहाँ का ठेकेदार लोग जो है ना पैसा मिलने के बावजूद भी पैसा नहीं मिला करके एकदम 6 महीने तक लटका दिया। तो फिर परिवार वाले क्या खाएंगे और हम वहाँ पर कैसे, परिवार को ही मेन बात तो है, परिवार को ही हम लोग रख करके जाते हैं दूसरा देश की ओर। लेकिन पैसा ही अगर नहीं मिलेगा तो परिवार भी आपको गाली देगा, तो कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं और कहे पैसा नहीं आ रहा है सबका। तो बाद में वहाँ से भी ठगा करके फिर हम वापस आ गए और यहाँ हम अभी फिलहाल तो सेंटरिंग वेंटरिंग का काम करते हैं।
0: अच्छा,
1: स्वरोजगार टाइप का।
0: स्वरोजगार, अच्छा। इस प्रकार के जो हमारे युवा जो जाते हैं वहाँ, पेमेंट तो बहुत अच्छा नहीं मिलता होगा?
1: पेमेंट तो बहुत अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन क्या करेगा आदमी के महीना में मिलता है जो भी पैसा, तो उसको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि चाहे वर्षा में भी अगर कर ले तो यहाँ पर भी 700 से 800 तक का मजदूरी है आपका मिस्त्री लोग का, और कुली लोग का मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 तक है, और वहाँ भी वही रेट में वहाँ भी कर रहा है आदमी, वहाँ जाकर चेन्नई जाकर के 450 में ही कर रहा है।
0: अच्छा,
1: ऐसा स्थिति है,
0: लेकिन फिर भी वहाँ जाता है।
1: हाँ, फिर भी वहाँ जाता है।
0: तो क्या ऐसे नहीं लगता है कि हम स्वरोजगार के स्थान पर किसी के अधीन हम रहना चाहते हैं?
1: हाँ, एकदम किसी का अधीन ही हम लोग काम करना पसंद करते हैं, और कुछ रिस्क जो है ना वो हम लोग लेने से ही डरते हैं।
0: अच्छा, जैसे लेने से डरते हैं
1: इसलिए ही है कि जो किसान जो बागवानी और धान उसमें भी रिस्क अभी बहुत कम ले रहे हैं आदमी लोग, जितना भी जमींदार बोला जाए या तो खेती करने वाले किसान लोग बहुत कम, मतलब समझ लीजिए कि 1 से 2 एकड़ करते हैं उसके बाद नहीं करते हैं, क्योंकि संभव नहीं बनता है।
0: तो क्या बाजार में कृषि फसलों की मांग नहीं है क्या ज़्यादा?
1: नहीं, मांग तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ जो जितना धान, जितना जो आप मजदूरी दे रहे हैं,
0: हाँ,
1: उतना से अगर जो ज़्यादा भी हो जाए सब फसल तो लगता है कि ठीक है।
0: हाँ,
1: अगर फसल अगर मजदूरी से भी अगर घट जाए तो फिर किसान क्या करेगा, मरेगा ही ना।
0: हाँ, यानी इसीलिए मतलब खेती छोड़ेगा।
1: हाँ, खेती छोड़, जैसे कि धान को, धान का फसल अगर वो कर लिया है, करने के बाद में उसको अगर 15 रुपये में मार्केट में बेचेगा तो फिर कितना कमाएगा किसान, और उसे लगा तो मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जा रहा है
0: क्योंकि आपका जो मजदूर लोग हैं जिसको आप लगा रहे 300 साढ़े 300 पर डे ले,
1: तो
0: ऐसा तो संभव नहीं है कि यदि हमारे घर वाले ही खेती बाड़ी करे तो ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है।
1: नहीं है,
0: तो इसीलिए आज आप स्वरोजगार के रूप में सेंटरिंग का काम कर रहे हैं। तो सेंटरिंग में आप क्या क्या लेते हैं?
1: सेंटरिंग में हम जमनी स्तर से फाउंडेशन से लेकर प्लास्टर तक पूरा बिल्डिंग तक कर लेते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: लिपाई पोताई पोटी फोटी सब लगा के भी जैसा जिसको चाहिए वैसा हम लोग करके देते हैं।
0: अच्छा, तो सामान आपके पास क्या क्या रहता है?
1: मेरे पास है कि मेरे देखिए सेंटरिंग लोग के पास तो सेंटरिंग है और मिस्त्री और लेबर है।
0: हाँ,
1: बस उसी में से ही सब कुछ काम कर लेते हैं हम लोग।
0: अच्छा, तो क्या इस सेंटरिंग को जो बड़े बड़े जो सरकार की जो बड़ी योजनाएं रहती है खास करके बिल्डिंग सबका, कहीं 2 तल्ला 5 तल्ला, तो उसमें जो सेंटरिंग में जो लोहा का जो यूज किया जाता है चढ़ने के लिए, क्या वो काफ़ी महंगा रहता है क्या?
1: हाँ, वो सब तो काफ़ी महंगा रहता है, और उस सब पाइप जो है वो जैक सिस्टम रहता है।
0: हाँ,
1: और उधर आपका चादरा टाइप का वो बना रहता है ना, तो महंगा पड़ेगा। और हम लोग का जो भी मस्तर बने जाने की जो हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं वो कॉस्ट वो नहीं दे पाएगा।
0: अच्छा, मतलब बड़े स्तर पर यदि चल रहा है तो वैसे मतलब कॉन्ट्रैक्टर जो है ना उसको कर सकता है, छोटे कॉन्ट्रैक्टर इसको नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो भी आप जिसके पास बिल्डिंग बनाने की बात कर रहे हैं उस रेशियो में वो पेमेंट नहीं दे पाएगा।
1: हाँ,
0: अच्छा, यानी इसके साथ संभावना तो है लेकिन चुनौतियाँ भी है। तो आने वाले समय के लिए आपका क्या प्लान है किस क्षेत्र में आप ज्यादा, क्योंकि सेंटरिंग भी धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे बहुत सारा प्लास्टर मशीन सब भी आना शुरू हो रहा है या स्प्रे मशीन सब भी आना रहा है जो कलर पेंट करता है, ऐसे स्थिति में क्या लग रहा है कि ये सीमित होगा, इसमें भी चुनौती बढ़ेगा यदि कोई इस टाइप का यदि हमारे फार्मर हो या एंटरप्रेन्योर यदि इस सेक्टर को लेके आता है उन मशीनों को लाएगा तो ऐसा लगता है चुनौती सामना करना पड़ेगा?
1: हाँ, चुनौती तो अभी आने वाली नहीं है, घुस गया है समझ लीजिए। तो मेरे ख्याल से इसलिए आदमी लोग को जो है ना डायरेक्ट सेलिंग में जाना चाहिए।
0: अच्छा,
1: डायरेक्ट सेलिंग में जाना चाहिए और वैसे ही करके ही ये डायरेक्ट सेलिंग जो है, डायरेक्ट सेलिंग बोला जाए तो आदमी को एक दूसरे से जुड़ना,
0: मतलब सगे संबंधियों को यानी परिवार रिलेशन जो हमारा टूट रहा है,
1: टूट रहा
0: प्राचीन काल में जो मानव सभ्यता थी एक दूसरे से काफी मधुरता संबंध रही है, लेकिन आज भौतिकवाद की दुनिया में हम काफी अपने सगे संबंधियों को भूल रहे हैं।
1: जी जी।
0: तो ऐसा स्थिति में इस प्रकार की जो यदि भारत सरकार आमंत्रित कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए।
1: हाँ जी, और इसमें जो अभी जो है ना डायरेक्ट सेलिंग को जो है ना भारत सरकार हम लोग का ये 2016 में ये लोग को दे दिया है।
0: अच्छा।
1: दे दिया है, गाइडलाइन दे दिया है। तो अभी सिर्फ वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को जो है ना आपको चुनाव करना है, अच्छा कंपनी में आप जुड़ जाइए और लोगों को भी जोड़िए, संबंधी को भी जोड़िए, रिश्तेदारों को जोड़िए, उस हिसाब से आप रोजगार हो सकते हैं, स्वरोजगार हो सकते हैं।
0: महावीर जी, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी और एक संदेश के स्वरूप में भी उन्होंने आपने बताया कि हमें अगले जनरेशन के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।
1: जोहार।
2: श्रोताओं, अभी हम जानकारी ले रहे थे एक स्वरोजगार करने वाले युवा से। इस जानकारी के बाद आइए सुनते हैं ये संदेश।
3: इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समंदर और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।

श्रोताओं, इस नागपुरी लोकगीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम खेती गृहस्थी अब संपन्न होता है। अब सुरेश चंद्र सोय को विदा दीजिए। जोहार।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्र सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 के लिए रांची जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अपर जिला दंडाधिकारी धनंजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में परीक्षा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। यह परीक्षा 14 जून को रांची के 5 केंद्रों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी। रांची में आज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ रबी फसलों के मूल्य निर्धारण को लेकर बैठक की। सीएससीपी के अध्यक्ष ए गणेश कुमार ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है और रबी मौसम में तेलहन फसलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार मीणा की अध्यक्षता में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन को लेकर जिला स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने बताया कि 15 से 24 जून तक विशेष नामांकन अभियान चलाकर 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी दिव्यांग एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। गुमला नगर भवन में आज पंचायत उपबंध झारखंड नियमावली 2025 पर एक दिवसीय जिला स्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने कहा कि पेसा नियमावली पूरी तरह लागू हो चुकी है और इसका उद्देश्य परंपरागत ग्राम सभा तथा पंचायती राज स्वशासन व्यवस्था को मजबूत बनाना है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से और अब सुनते हैं क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अकड़ा।

इला इंदा तिसिंग अबू आयरपा तिसिंग बु जानकार रे जगर बु जफगाची समानता रे अधिकार कुना अबु भारत दिसुम रे आ संविधान रे ओल तोलकना ओकन रे अबु अनुच्छेद 14 ते 18 जों ओकना मिना आ निना अबु हातो दिसुम करे नेची अपना वा करे ताइन तेन रे जाइलो जिताइलो रियो हिसे चेंटा अंड ओ भेदभाव लेकन काजी कापाजी निनको अगर जो दी हो बना एंदो नेन समानता रे अधिकार लेकते अबेन दोषी बेन लेकते युवा जो दी निना लेकते जाय रियो हिसे चेंटा ची दोषी लेका ए गोंदे बिना ए ची जाति पते लेका ए गोंदे बिना एंदो अबेन नेन समानता रे अधिकार लेकते अबेन आए कानूनन अपराध बैदयु अंडो नी दोसरी सजाए नम दई इनमेंते ने अबु भारत देशम रे कोन संविधान मिना निनरिया प्रावधान इनमेंत्रो मिना छि अबु अपना आ उंडी बोया करे चाहतुरन कोलो छि जाय ने देशम रेन कोलो आलोकबु कपाजी इनका रूपतपम छि भेदभाव लेकन काजी को अलका होबन इनमेंत्रो निनरिया प्रावधान मिना नेनरे अंडो आदान गया बा अबु हाथ दिसुम करे ची अबु वा करे बुगेते के ताइन तिया का गोपन तिया जाति पति एपरंग को जाइलो का एपरंग तिया इना मंत्रो निनारे आ दरकार एसो मिना द नेलका को अलकबु गोपन दे अलकबु कपजे जाइलो रियो ज्योति हिना बु कपजे बु एन द अबु दोसी बु होबदयु अंडो अबु साजा बु नाम दई इलामार जगार को दलाली गया आयरपा मी दुरंत बरसी के लेनो नंदुगोप अंडो अकिने जुड़ी को पाए थे।

अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अकड़ा। हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुनते हैं बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

0: जय हिंद बच्चों। आज की नन्ही दुनिया सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को अंजू दीदी का ढेर सारा प्यार। कैसे बच्चों? चलिए, अंजू दीदी तो चाहेगी कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहे, खेलते कूदते पढ़ते रहे, है ना बच्चों। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। अब बताइए बाल श्रम का अर्थ क्या होता है बच्चों? बाल श्रम यानी कि बाल का मतलब बच्चे, है ना, छोटे बच्चे, आप जैसे। श्रम मेहनत करना, मजदूरी करना। बच्चों बाल श्रम निषेध दिवस हर साल 12 जून को बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और बच्चों को उनके बुनियादी अधिकारों और शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर से बाल श्रम की समस्या को उजागर करना और इसे जड़ से खत्म करने के लिए सामूहिक कदम उठाना है। समाज में बाल मजदूरी के खिलाफ लोगों को जागरूक करना ताकि वे बच्चों को काम पर रखने के बजाय पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, इसका उद्देश्य है। कुछ बच्चे आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि कुछ बच्चे काम करते रहते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। जब वो काम करते हैं किसी के घर में या कहीं पर भी तो उन्हें उनके उसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं, क्योंकि उनको कहीं कहीं ऐसी ज़रूरतें रहती है, उन्हें घर में मजबूरी होती है तो वो काम करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, किसी तरह से उनकी मदद करनी है, उनको मजदूरी करने के बजाय उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। लाखों बच्चों को खतरनाक कारखानों, होटलों और खेतों में काम करने से बचाना जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास को रोकते हैं, क्योंकि कारखाने में काम करेंगे तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा शारीरिक मेहनत करनी होती है। होटलों में किसी के ताने सुनने पड़ते हैं, कहीं भी हो, होटल में हो, कारखानों में हो, खेतों में हो, है ना, शारीरिक के साथ साथ उनका मानसिक बर्तावना भी होता है, विकास रुक जाता है। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले ताकि वह अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके, ये उनका शिक्षा का अधिकार है बच्चों, है ना, ये शिक्षा का अधिकार उनको है। इसे पहली बार 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा शुरू किया गया था ताकि सरकारों और संगठनों को बाल श्रम को समाप्त करने वाले नीतियों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। बच्चों में याद दिलाता है आज का दिन कि बच्चे काम करने के लिए नहीं बल्कि पढ़ने और खेलने के लिए होते हैं, है ना। तो आप सबको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि आपको कहीं मजदूरी करने की ज़रूरत ना पड़े। आप अच्छे से पढ़ो ताकि आप आगे बढ़ो और आप अच्छे जगहों पे नौकरी करो, है ना। तो अपने पढ़ाई पर आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।
1: राहें ना अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: तीन आले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले नगे नहर में ना भले नुकन परिस्थिति रे भले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कागे हम भले रुड़ तबन में मोर
4: नाम मंगल राय को गाँव बारीगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आऊ का कहाँ बंदा है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रनबला देवी गाँव बारे हत्तो तो घर आई में हमारे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
6: मुकुम बुरन सिंह तमसाय अनिता तमसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुकुर मिनाइए यापा में रिया तपा में रिया वाह बेटा निका
7: अन्यान तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्यान हम दो कोदमरी कोड़ा और पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मिनिमल बुरुड़ी ने बागिया तो कि दुना से यार सी कोलो पुलिस कोलो उन्हें लड़ाई चलाओ तमे बुरुड़न गया तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल मिया
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिनाइ रो जिता हुरा रे मिनाइ रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिटा हुरेन का
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।

0: आपने सुना बच्चों एक प्यारा सा गीत। चलिए मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, यह प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे ज़िले में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वत्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण योजना या देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है, और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकतानुसार यह 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। आइए जानते हैं फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल क्या है। यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं पर एक अस्थायी व्यवस्था है जहां बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष तथा दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती। अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो, परिवार हर बच्चे का अधिकार है, तो आइए जरूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी है तो जिला बाल संरक्षण इकाई 9955131364 या फिर 9090700489 पर संपर्क करें, या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय तीसरा तल्ला चैवासा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई पश्चिमी सिंहभूम द्वारा जन सूचना जारी। हमने जानकारी ली बच्चों मिशन वात्सल्य योजना पर। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।
1: नमस्ते, मेरा नाम अनन्या कुमारी है। मैं कक्षा 7वीं अ की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को मैथिली शरण गुप्त जी की एक प्यारी सी कविता सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: चलिए बच्चों, हमने सुना कुछ जरूरी संदेश, आज मैं एक कहानी बताती हूँ, चांद पर खरगोश, है ना। चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले गंगा किनारे एक जंगल में चार दोस्त रहते थे। कौन कौन? खरगोश, सियार, बंदर और उदबिलाव। इन सभी दोस्तों की एक चाहत थी सबसे बड़ा दानवीर बनना। एक दिन चारों ने एक साथ फैसला किया कि कुछ ना कुछ ऐसा दान कर लाएंगे, हम लोग ऐसा ढूंढ कर लाएंगे जिससे जो दान कर सके हम लोग, है ना। वो लोग दान करना चाहता है, परम दान लेने के लिए, है ना। चारों मित्र अपने अपने घर निकल गए। उदबिलाव गंगा तट पर तट से लाल रंग की एक सात मछलियां लेकर आया और सियार दही से भरी हांडी और मांस का टुकड़ा लेके आया। और उसके बाद बंदर उछलता कूदता बाग से आम के गुच्छे लेकर आ गया। दिन ढलने को था लेकिन खरगोश का कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लेके जाएं। उसने सोचा अगर वो पास का वो तो घास खाता है तो घास लेके जाएगा तो वो तो दान कैसे करेगा, है ना। तो उससे तो उसको कोई लाभ नहीं होगा घास दान करने से। अब वो दिमाग लगाने लगा कि क्या करना चाहिए। सोचते सोचते खरगोश खाली हाथ ही वापस चला गया। खरगोश को खाली हाथ लौटते देख तीनों मित्रों ने पूछा, अरे तुम क्या दान करोगे? आज ही के दिन दान करने से महादान का लाभ मिलेगा, पता है ना तुमको, लेकिन तुम तो खाली हाथ आए हो, सब उनको बोलने लगे। खरगोश ने कहा, हाँ मुझे पता है, इसलिए आज मैंने खुद को दान करने का फैसला किया है। उसको कुछ नहीं मिला दान करने के लिए, कुछ नहीं ला पाया, तो उसने क्या बोला कि आज मैं खुद को ही दान कर दूंगा, है ना। यह सुनकर खरगोश के सारे दोस्त हैरान हो गए। जैसे ही इस बात की खबर मिली तो इंद्र देवता तक ये खबर पहुंच गई तो वो सीधे धरती पर आ गए। इंद्र साधु का वेश बनाकर चारों मित्रों के पास पहुंचे। पहले सियार, बंदर और उदबिलाव ने दान किया क्योंकि वो साधु के वेश में थे। फिर खरगोश के पास से इंद्र देवता पहुंचे और कहा कि तुम क्या दान करोगे? तो खरगोश ने बताया कि वो खुद को दान कर रहा है। इतना सुनते ही इंद्रदेव ने क्या किया, वहाँ अपनी शक्ति से आग जलाई और खरगोश को उसके अंदर जाने के लिए कह दिया कि अब उसमें समा जाओ। तो खरगोश ने हिम्मत करके आग के अंदर घुस गया क्योंकि सामने वाला तो साधु के वेश में आए थे तो उसका तो इनकार नहीं कर सकता था और उसने बोला भी था कि आज मैं खुद को दान करूंगा, है ना। तो वो आग में घुस गया। यह देख करके सब हैरान रह गए। तो उसके मन में हुआ कि खरगोश को अपने आप से लग रहा था कि अब मैं क्या करूं, है ना। तो बहुत बड़ा है ना दानी बन रहा था। तो लेकिन उसके बाद जब वो आग जला तो सही सलामत खड़ा था। उसके बाद फिर इंद्रदेव ने कहा कि मैं तुम्हारे परीक्षा ले रहा था, आग तो ये मायावी है। और उसके बाद खरगोश को कुछ नहीं हुआ। तो बच्चों, इसी कहानी के साथ आज का हमारा नई दुनिया का ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अंजू दीदी को दीजिए विदा। जय हिंद।

0: जब प्रधानमंत्री जी ने कहा,
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
3: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026, रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
4: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर लगाई रोक। जरूरत के पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति थोक बिक्री केंद्रों से होगी। रांची में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। रबी फसलों के मूल्य निर्धारण पर ली गई राय। झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए रांची में तैयारियां पूरी। 14 जून को 5 केंद्रों पर होगी परीक्षा। झारखंड में पहुंचा मॉनसून। मौसम विभाग ने जलवायु परिवर्तन के कारण इस वर्ष जताई सामान्य से कम बारिश होने की संभावना। और झारखंड T20 लीग में कोयलांचल सुपर किंग्स ने शानदार जीत हासिल की। छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। रांची में आज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP ने पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ रबी फसलों के मूल्य निर्धारण को लेकर बैठक की। CACP के अध्यक्ष ए गणेश कुमार ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं झारखंड के कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि केंद्र सरकार से झारखंड के किसानों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखने का अनुरोध किया गया है।
1: झारखंड सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते मेरे फर्ज बनता है हमारा किसान का समस्या चैलेंजेस उसके सामने रखना, और भारत सरकार बीइंग और सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारा जो गार्डियन के रूप में उनसे रिक्वेस्ट करना हमारा किसानों के हित में अपना पॉलिसी MSP में निर्धारण किया जाए, ये प्रयास हम लोग जरूर किया है।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 के लिए रांची जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अपर जिला दंडाधिकारी धनंजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में परीक्षा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। यह परीक्षा 14 जून को रांची के 5 केंद्रों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मेदिनीनगर नगर निगम की 93 लाख रुपए की एक सड़क योजना को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शांति और सुरक्षा का माहौल स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का महिमामंडन नहीं होना चाहिए।
2: नगर निगम के द्वारा एक योजना की स्वीकृति दी गई और योजना का नाम रखा गया डब्लू सिंह के घर से मेडिकल कॉलेज तक सड़क का निर्माण। मेरी आपत्ति इस मायने में है कि एक ऐसा व्यक्तित्व या एक ऐसा चरित्र जिसके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के आरोप लगे हो उसका नाम योजना से जोड़ा जाए, यह कदापि उचित नहीं हो सकता।
0: अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए छात्रवृत्ति भुगतान दिसंबर से पहले सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया। मंत्री ने साइकिल वितरण योजना में तेजी लाने तथा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को नए स्वरूप में अधिक प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए। रांची में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की बैठक में जनगणना कार्य मतदाता मैपिंग और विभिन्न प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने 13 और 14 जून को मतदाता मैपिंग के लिए आयोजित विशेष शिविरों के व्यापक प्रचार प्रसार तथा सभी मतदान केंद्रों पर BLO की सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के तहत कल रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट ऑडिटोरियम रांची में यंग प्रोफेशनल्स राउंड टेबल का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का विषय आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड रखा गया है। माय भारत रांची द्वारा सहयोगी संस्था प्रोजेक्ट पॉइंट ओडिशा के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में युवा पेशेवर विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जामताड़ा जिले के किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने बताया कि किसान सम्मान निधि से किसानों की कृषि लागत कम हुई है और उन्हें समय पर खेती करने में सहायता मिल रही है।
3: पीएम किसान सम्मान निधि है जो जिले में किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। अभी खरीफ में आप देखिए तो उनको खाद बीज इनपुट खरीदने के लिए उससे बहुत मदद मिलती है। राज्य सरकार की भी योजना में आप देखिए मिलेट मिशन है, इसके अलावा बीज उत्पादन में भी सब्सिडी दी जा रही है। उसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज से 100% सब्सिडी पे बीज भी अभी दिए जाने हैं। उनकी आय दुगुनी से भी ज्यादा हो इसके लिए जिला कृषि कार्यालय प्रयत्नशील है।
0: गुमला नगर भवन में आज पंचायत उपबंध झारखंड नियमावली 2025 पर एक दिवसीय जिला स्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने कहा कि पेसा नियमावली पूरी तरह लागू हो चुकी है और इसका उद्देश्य परंपरागत ग्राम सभा तथा पंचायती राज स्वशासन व्यवस्था को मजबूत बनाना है। उन्होंने रिक्त पारंपरिक ग्राम प्रधान पदों को स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार शीघ्र भरने का निर्देश दिया। हजारीबाग में आयोजित आम उत्सव में महिला किसानों और आम उत्पादकों का उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले के उपायुक्त हेमंत सत्ती ने कहा कि मनरेगा और बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से किसान आम बागवानी अपनाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
4: प्रोडक्शन तो है लेकिन जो उसकी वास्तविक कीमत है वो किसानों को नहीं मिल पाती। उनकी बेहतर कीमत दिलाने के लिए विकास आयुक्त द्वारा ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया जिसमें एक ओर व्यापारी वर्ग है, दूसरी ओर उत्पादक गण है। सामंजस्य को बनाने के लिए उसके लिए मेले का आयोजन किया गया है।
0: और अब मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने आज झारखंड में प्रवेश कर लिया है और जामताड़ा, देवघर, दुमका, गुड्डा, पाकुड़, साहिबगंज समेत धनबाद, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम के कुछ हिस्सों को कवर कर लिया है। मौसम विज्ञान विभाग रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मॉनसून की उत्तरी सीमा वर्तमान में धनबाद होते हुए आगे बढ़ रही है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान झारखंड के और अधिक क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है।
5: मॉनसून का आगमन एक सुखद समाचार इसमें लेके आया है। झारखंड में 12 जून को मॉनसून पहुंचता है और मध्य भाग रांची समेत में 15 तारीख को मॉनसून पहुंचता है। पूर्वी भाग है वहां पे 12 जून को अपने सही समय में पहुंचा है और अगले 2-3 दिनों में इसका विस्तार झारखंड के अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग को देखने को मिलेगा।
0: झारखंड T20 लीग में कोयलांचल सुपर किंग्स ने रोमांचक मुकाबले में छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। 191 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोयलांचल सुपर किंग्स ने 19.1 ओवर में 5 विकेट खोकर जीत दर्ज की। कप्तान उत्कर्ष सिंह ने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर लगाई रोक। जरूरत के पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति थोक विक्री केंद्रों से होगी। रांची में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। रबी फसलों के मूल्य निर्धारण पर ली गई राय। झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए रांची में तैयार

0: पूरी, 14 जून को 5 केंद्रों पर होगी परीक्षा। झारखंड में पहुंचा मॉनसून, मौसम विभाग ने जलवायु परिवर्तन के कारण इस वर्ष जताई सामान्य से कम बारिश होने की संभावना। और झारखंड टी20 लीग में कोयलांचल सुपर किंग्स की शानदार जीत, छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार
1: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आई मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
2: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहाँ भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चले, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि ये 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा, तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
2: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आई, उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
3: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाते हैं तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोविनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि वो 13 की संख्या बढ़ करके और 670 से ज़्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपत्तियाँ संपदाएँ चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में, उस समय में उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज़ को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज़ का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज़ वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बन करके उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
2: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
3: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण, उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहाँ अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहाँ जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिला हो, ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर के आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में GST का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके, जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके, मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहाँ परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहाँ लेकर के जाऊँगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूँगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूँगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति बढ़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया, उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल

0: देखते हैं तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है। उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है। इसके अतिरिक्त तो टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रुक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज़्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णु प्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पांस आप देख रहे हैं?
0: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहाँ एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखी गढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहाँ से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 50 से ज़्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें AI तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे, भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों

भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था, वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। ये हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए, और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्का स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे, उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाए। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया, 3 दिन तक सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पे काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सोल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने, और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च की 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो, उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन की आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूली पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था, लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा ये 400 साल पहले भारत की मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है, और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या हैं, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो है 2500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे, और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे।

0: भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी। और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा। और न केवल भारत के प्रति, अपितु भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी, और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई। राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम। क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: कि वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था। देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी। और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया, और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बायर कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोलू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आज़ादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे, और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर कहा कि श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियाँ आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए, और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सके, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आजादी की लड़ाई थी। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है, और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इम्पोर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश ने, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है, और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है, और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप, छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आजादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने हैं। एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया, जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सकें, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहाँ जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव
1: जी,
0: या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों की भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: क्योंकि भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूँगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहाँ कहीं भी अवसर मिले, जैसा क्या भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़ें। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है, वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली कार्य दिल्ली केंद्र से विशेष श्रृंखला के तहत सरकार के 12 वर्ष। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पे। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ राधा, नमस्कार। और अब इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नगीना का गीत। मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ है, आनंद बख्शी के गीत हैं और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के। इस गीत को सुनना चाहे है तूरी टोला चायवासा से मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, रोहित ठाकुर, संगीता देवी, लाडो, हरी, खुशी कुमारी, रिया कुमारी, अर्पिता कुमारी। सेंटोला चायवासा से भोला राम मधुर, विनोद कुमार पवन, मीना पवन। और आप हैं न्यू कॉलोनी निमडी चायवासा से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, अनीश, अंश, अंशु, मुन्ना। अमलाटोला चायवासा से इसी गीत को सुनना चाहा है गौरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, शीतल गुप्ता और अभिषेक सोनू। बड़ा निमडी चायवासा से तुलसीपति, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार, शुभम कुमार। इसी गीत को सुनना चाहा है छोटा निमडी चायवासा से बाबूराम, शांति देवी, रीति, कोमल, रोहन। आप सबों की पसंद पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नगीना का गीत।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

इसके साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद आज इतना ही। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फरमाइसी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

हम आकाशवाणी के जायवासा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आइए सबसे पहले इस कार्यक्रम में हम आपको सुन पा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म नीलकमल का ये खूबसूरत सा गीत। इस गीत को सुनना चाहा है, इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है चांडील हारूडी गांव से तुलसीदास महतो, मनोरमा कल्पना महतो, मनमोहिनी महतो, दीनबंधु गांव चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत, श्रीमती वासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत। कॉलेज रोड घाटशिला से सोना रूपा मोनिका शिवम मौसमी संतोष आनंद। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है गांव पोंडाकाटा से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती महली, सुहानी महली, संजय सोरेन, नंदिनी महली, संजीव महली, विजय बेसरा। बड़ा बम्बो सुपाई साई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा ताती, प्रकाश ताती, ललित प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, श्याम देव नायक और देवेन बाबू। गांव गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बासंती, अनु, रमेश, बनमाली, सिद्ध कुमारी और पूजा एवं बेसरा परिवार। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है गांव दलाई केला पदमपुर सरायकेला से लक्ष्मण सोए, विरसा सोए, राज सोए, अनीता सोए, मनीषा, पूनम और समस्त सोए परिवार। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है जोजो कुर्मा से मनोज गागराई, बासंती गागराई, सोनाली, आयशा, जितेंद्र, पीताम्बर महतो, रचना गागराई। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नीलकमल का ये खूबसूरत सा गीत।

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो वो जंगल गया है तो आउ का कहां बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई का नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रंगबला देवी गाँव बारे हतो था तो घर आई में हमरे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
5: नितुम बुरन सिंह तामसाय अनिता तामसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुखुर में ना आइए जापा में रिया तपा में रिया वाह बेटा निका
6: अन्यान तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मुनि में बुरुड़ी ने बागिया तो कि दुना से आरती कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तमे बुरुड़ी में गया तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल मिया
7: अलिंग मुनि सुरन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिनाइ रो जिता हुरा रे मिनाइ रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया नु तुम तेना मिल आप ही लेता ना।
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
8: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
9: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
8: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
9: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
8: डायल कीजिए 8700014242।
9: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
10: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम रजनीगंधा में, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पुलिस और मुजरिम का ये खूबसूरत सा गीत उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ों में। अनजान के लिखे गीत को संगीत से सजाया है बप्पी लहरी ने। इस गीत को सुनना चाहा है महुलडिया सोनवा से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रवि बारी, बंदनी, संतोषी, दीपक, संतोष, राहुल, अनु, तनु, भाई नंदू महतो, गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलसन नायक। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सामले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, वंश बत्ता। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है सदा वद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, धर्मेंद्र और जितेंद्र। गोला बाजार बक्सर से इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। आप हैं शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजू लता, आदित्य कुमार और प्रेश श्रीवास्तव। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है कुचाई बिदरी से के पी सेठ सोई, दुर्गामती, सरिता, रेशमी, राजकुमारी, विशाल, मुन्ना, सन्नी। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवि श्रीवास्तव। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पुलिस और मुजरिम का ये खूबसूरत सा गीत।

साजन इस फिल्म का गीत आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं। अलका याग्निक की आवाज़ है, समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण के संगीत। और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया, दंतरेगी से भागवत वर्मा, लवई से गुलाब दास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मालवी सिंगारपुर से सालिक पुजारी, और सरायकेला गांव कीता से राधा कृष्ण गोप, सुनीता, उमा, गीता, रीता, सरस्वती, आराध्या, अमित, सुमित गोप, अभिषेक, आशीष, विकी गोप, शुभम गोप, विनोद, राजू, राजन गोप, माहिर गोप। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है सरायकेला पाड़ापुर दिसावली पहाड़पुर से शिवम, शिवाजी मुंडरी, सुरुमानी मुंडरी, हीरामणि मुंडरी, हेमंती डोबरो मुंडरी, साजन सिद्धेश्वर पाड़ापुर, शिवाजी डोबरो, मुकेश कुशल मुंडरी, जामुन सिंह मुंडरी, जानुम सिंह मुंडरी, सिद्धि बोस, सोना बाबू सोना एफएम, शिवा मुंडरी, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमन दीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म साजन का ये सुंदर सा गीत अलका याग्निक की आवाज़ है।

और अब सुनते हैं सुरेश वाडेकर, लता मंगेशकर की आवाज़ों में पंडित नरेंद्र शर्मा के लिखे गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है प्रेम रोग। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है पटेल नगर भलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मुन्ना प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान। आदर्श नगर भलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरभ शर्मा। दुबिया नेवदा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फुलमाली, दीपक फुलमाली, कृष्णा वर्मा और समर फुलमाली। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्रेम रोग का ये गीत।

और प्रोग्राम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तेरी मेहरबानियाँ का ये गीत, अनुराधा पौडवाल शब्बीर कुमार की आवाज़ों में, एसएच बिहारी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। और सुनने के लिए फरमाइश भेजा है बेरी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गोविंदकर, धीरज सब्बा शेरे। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है रिगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। आप हैं नारायणपुर आमदास से नायडू महतो, खेतो मोहन साहू, उषा महतो, प्रिया महतो, डॉली महतो, तरुण महतो, पंकज कुमार महतो और समस्त महतो परिवार। आप हैं अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिण ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है भाटापाड़ा दंतलेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुलढाना से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर, गोपाल पाटिल। आप सब फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तेरी मेहरबानियाँ।

मेहरबानियाँ का इस गीत के साथ ही श्रोताओं, फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा से अब राधा को दीजिए इजाज़त। पुनः होगी मुलाकात अगले कार्यक्रमों में, तब तक के लिए नमस्कार।

हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पे। कुछ ही पलों में समाचार संध्या के तहत आप क्रमशः सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की नीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
5: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हुरमुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार केरल माहे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जम्मू कश्मीर तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons US Charge d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over US strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney.

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.7 MHz पे। रात्रि के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है गजलों का कार्यक्रम महफिल। पहली गजल हम आपको सुनवा रहे हैं मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ों में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार।

0: विज्ञापनों के माध्यम से
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस विराम के बाद आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में ये अगली गजल।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में ये सुंदर सी गज़ल, और अब अगली गज़ल हम आपको सुनवा रहे हैं मनहर उदास के स्वर में।

आप सुन रहे हैं श्रोता आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से गजलों का कार्यक्रम महफिल। और अब अगली गजल हम आपको सुनवा रहे हैं चंदन दास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में।

अनुराधा पौडवाल की गाई इस गज़ल के साथ ही कार्यक्रम महफिल से अब राधा को दीजिए इजाज़त। पुनः होगी मुलाकात कुछ ही पलों में फिल्म संगीत के ज़रिए। तो इस कार्यक्रम से राधा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। पहला गीत मुकेश की आवाज़ है, फिल्म का नाम है बंदनी। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत दिया है ST बर्मन ने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम सुरों के रंग में। आदमी, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

आप सुन रहे हैं श्रोताओं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग मेरे हम सफ़र। इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में।

अमानुष इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में, और अब सुनते हैं पूनम की रात इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर के स्वर में।

इसके साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों का रंग अब ही पे समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी करें प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय

0: ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Amarnath Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata. Mr. Adhikari said people are giving their land for fencing along the Indo-Bangladesh border.
2: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
1: Defence Minister Rajnath Singh today inaugurated the Advanced Weapon System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realizing the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defense technologies. External Affairs Ministry today summoned Shah Jade Affair of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. The ministry said in a statement that such actions are unacceptable and undermine the safety, security, and stability